فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

وأتوب إليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

जो ना है आहे अली सभिनजो तू जो है मुझो ना है आहे अली सभिनजो दुश्मन भी उन जे दर ते दुश्मन भी उन जे दर ते खणी झोल झले थो हैदर जे गुलामन के दिसी लोक जले थो मौला अली जे दर ता भी गंज मिले थो हैदर जे गुलामन के दिसी लोक जले थो मरहब के हिकड़े पल में ताकत पंजी दशाई आशिक आया नबी जो शेरे खुदा चयाई आशिक आया नबी जो शेरे खुदा चयाई खुशबू उहा जगह थे खुशबू उहा जगह थे जाथों अली हले थो हैदर जे गुलामन के दिसी लोक जले थो हैदर जे गुलामन के दिसी लोक जले थो मौला अली जे दर ता अज भी गंज मिले थो हैदर जे गुलामन के दिसी लोक जले जले जले हो भुख पान के दई जो के दी पयो खराए पानी ते रोजो छोड़े मिस्की न ढव कराए पानी ते रोजो छोड़े मिस्की न ढव कराए बेअदब पंज तनन जो हो बेअदब पंज तनन जो हर दर रुले पिने थो हैदर जे गुलामन के दिसी लोक जले थो हैदर जे गुलामन के दिसी लोक जले थो हसने न जो बाबो बिरादर हबीब जो रहमत अली जगन ले बहादुर हबीब जो रहमत अली

हो दिसी सैयद के सामो दिसी सैयद के आशिक सजो लोक थी पवंदो वा मिठा तो जे गुलाम ले जो वा हाँ गुलाम नदी मौली मिठा

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे रखी करो नहीं।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular Mitti Ajo.
7: पेट्रोल ऐं डीजल महांगो करे छॾियो। पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 पैसा महांगो थियण खां पोइ 975 रुपया 82 पैसा फी लीटर थी वियो। डीजल वधीक 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण खां पोइ 940 रुपया 32 पैसा फी लीटर ताईं पहुची वियो। पेट्रोलियम डिवीजन पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल ऐं डीजल जा नवां अघ 12 खां 14 सेप्टेम्बर ताईं लागू हूंदा। वज़ीर आज़म मुल्क में बिजली जी लोड शेडिंग जो नोटिस वरितो। कंहिं बि इलाइक़े में 2 कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न करण जी हिदायत। बिजली जे लोड मैनेजमेंट ते जाइज़ो।
8: पोएट्री इट इज़ अराउंड अस, द पोएट्री ऑफ क्लैरिटी।
7: 2 कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न कई वञे। सिंध असेंबली जे मेंबर जो सिंध में बिजली जे बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ़ एहतजाज। स्पीकर अवैस कादिर शाह समूरनि बिजली कंपनीज़ जे चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसरस खे 23 सेप्टेम्बर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छॾी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिना महमूद चयो आहे त लोड शेडिंग पाणी बिजलीअ वारी वज़ारत जी नाली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामी जो आला तरीन मिसाल आहे। हेस्को सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक जहिड़ा इदारा आवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि। सिंध में 18 कलाक बिजली बंदि कई वञे थी। इहो मसइलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में भरपूर अंदाज़ में उथारियो वञे। रुगो बिजली न पर आवाम खे गैस ऐं पाणी जा मसला बि दरपेश आहिनि। स्पीकर बिजली कंपनीज़ जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरु वज़ीर खे चयो त हुन ते अमलदार न आया त अव्हां खे तकलीफ़ ॾींदासीं।
9: राहुल हक ने आखिरी तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में 2/3 एक्सेंट के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजोरिटी से कोई सुबह उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
7: सूबनि जे सरहदुनि बाबति क़ौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबली मां 2/3 जी अक्सर ज़रूरी आहे। ज़ियाउल हक़ अठनि तरमीम ज़रिए आईन खे तब्दील कयो जंहिंखे दुरुस्त थियणु घुर्जे। सूबनि जी सरहदुनि में तब्दीली बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे। सदर बि तरमीम ते सूबे जी मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरें ई अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जी आवाम सां गॾु बीठल आहियूं। टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटिताई रेंजरस जी कार्रवाईयुनि जो नतीजो आहे। पाबंदी मुड़ियल तंज़ीमुनि जूं सरगर्मियूं ऐं रुपो जवाबदार सिक्योरिटी लाइ ख़तरो आहिनि। अमुन अवाम जे जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ रेंजरस जी मौजूदगी ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजरस जे सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में 1 साल जी वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। थारा हुजे मतन में चयो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियाद ते थींदड़ ऑपरेशन में आम किरदार अदा कयो। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 19 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई करण वारे सऊदी अरब जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सक्यूज मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप सां फोन ते राबितो करे हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई जी दरख़्वास्त कई हुई, जेका ट्रंप रद्द करे छॾी आहे। ट्रंप इंतज़ामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब खे यमन में हथफन बाबति ॼाण फराहम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ़ हिन वक़्तु फ़ौजी कार्रवाई जो इरादो न आहे। यमनी हुसैन पारां सामूंडी गज़रगाह बाबुल मदब ते कब्ज़ो करण जी दावा, आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हुसैन मूजिब बाबुल मदब वेझो अल उमरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़कर बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाबुल मदब खे बंदि करण जो अख़्तियार बि हुसैन वटि आहे। पीटीआई जमतुल उलमा इस्लाम खे 27 सेप्टेम्बर वारे लॉन्ग मार्च में शिरकत जी दावत ॾेई छॾी। चेयरमैन बैरिस्टर गौर जी क़यादत में पीटीआई वफ़द जी जेयूआई सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात। 27 सेप्टेम्बर वारे मार्च कानून जी हुकमरानी आइन जी बालादस्ती ऐं तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान पारां APC कोठाइण ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। बैरिस्टर गौर चयो आहे 27 सेप्टेम्बर वारो एतिजाज मुल्तवी करण जी का बि तजवीज़ गौर वटि न आहे ऐं न वरी हुकूमत सां के ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। एतिजाज जी क़यादत सुहेल आफरीदी कंदो, जंहिं में सभु सियासी पार्टी शिरकत कंदियूं। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां बैकडोर चैनल ते राबितो रहंदो आहे। तफ़सील नथा ॿुधाए सघजनि। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी जो चवण हो त मुलाक़ात दौरान नवनि सूबनि जे क़याम ऐं APC समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी। सिटी काउंसिल कराची सिंध में नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मेंबर्स चयो त सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं सदा हिकु ई रहंदी। ॿोली जे बुनियाद ते नफ़रतुनि खे हथी न ॾिनी वेंदी। कराची खे सूबो ठाहिण इंतज़ामी यूनिट्स जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जो माज़ी लसानी बुनियादनि ते ॿधल आहे। जमात इस्लामी जे मेंबरनि जो ज़मीनुनि जे मामले ते एहतजाज। डेस्क ते बि नारेबाज़ी। मेयर मुसावाब डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद इजलास छॾे हलिया विया। मुर्ज़ाबाब जो चवण आहे त ॿुधायो वञे त नूर हक़ इदारो कंहिंजी ज़मीन ते ठहियल आहे। ही उहा मुनाफ़िकत आहे जंहिं ख़िलाफ़ आहियां। मुनाफ़िकत खे वाखो कयो वेंदो।
1: मोहसिन नक़वी अवामी नुमाइंदो आहे कोन। मोहसिन नक़वी जी पंहिंजी इहा केपेबिलिटी कोन्हे त हू यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन थी सघे। छापियल सीट ते सेनेटर आहे। मुल्क जे वसाइल ते कब्ज़े करण जी मनसूबाबंदी आहे।
7: मोहसिन नक़वी जी का बि ज़ाती हैसियत न आहे। हू न चूंडियल नुमाइंदो आहे, न ई का यूसी खटण जी हालत रखे थो। JUI सिंध जे जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद मोमन सुमरे मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त सिंध हिन वक़्तु साज़िशुनि ऐं मसइलनि जे वरचड़ियल आहे। सूबनि बाबति बयान वसीलनि ते कब्ज़े जी रथाबंदी समझूं था। MQ ऐं पाकिस्तान सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम वारो बिल सिंध असेंबली सेक्रेटरी में जमो कराए छॾियो। मेयर ऐं चेयरमैन खे एडमिनिस्ट्रेटर तौरु मुक़रर करण जी सख़्त मुख़ालफ़त। चूंडियल मेयर ऐं चेयरमैन खे बाख़्तियार मकानी हुकूमत जो इंतज़ामी सरबराह बणाइण जी तजवीज़। बिल में अख़्तियार वसीला ऐं ज़िमेवारियूं हेठियुनि सतह ते मुंतक़िल करण जो मुतालबो कयो वियो। MQ ऐं पाकिस्तान चयो आहे त बलदियाती इदारनि ते अणचूंडियल एडमिनिस्ट्रेटर मुड़नि बदिरां गैर जानबदार सिविल सर्वेंट खे एडमिनिस्ट्रेटर बणायो वञे, जंहिं कम जी ज़िमेवारी बलदियाती हुकूमतनि खे ॾिनी वञे। उन सां गॾु माली वसीला बि फराहम कया वञनि।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हुकूमत हलंदड़ हफ्ते जी पुजाणीअ ते बि पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो करे छॾियो। पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 पैसा महांगो थियण खां पोइ 9 अघ 375 रुपया 82 पैसा फ़ी लीटर थी वियो। डीज़ल वधीक 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण खां पोइ 9 अघ 403 रुपया 32 पैसा फ़ी लीटर ताईं पहुची वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा 9 अघ 12 खां 14 सेप्टेम्बर ताईं लागू हूंदा। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में बिजली जी लोड शेडिंग जो नोटिस वरितो। कंहिं बि इलाइक़े में 2 कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न करण।
1: बच्चे तो कोई भी ग्लास उठा सकते हैं क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे हैं और ये नहीं जानते।
0: इजलास दौरान शहबाज शरीफ बिजली जी लोड शेडिंग ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त कंहिं बि इलाइक़े में 2 कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न कई वञे। सिंध असेंबली जे मेंबर्स जो सिंध में बिजली जे बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ़ एहतजाज। स्पीकर अवेज़ कादर शाह समूरनि बिजली कंपनीज जे चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर्स खे 23 सेप्टेम्बर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छॾी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिली नामेमण चयो आहे त लोड शेडिंग पाणी बिजली वारे वज़ारत जी नाहिली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामीअ जो आला तरीन मिसाल आहे। हेस्को सेप्को ऐं के इलेक्ट्रिक जहिड़ा इदारा आवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि। सिंध में 18 कलाक बिजली बंदि कई वञे थी। इहो मसलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि भरपूर अंदाज़ में उथारियो वञे। रुगो बिजली न पर आवाम खे गैस ऐं पाणीअ जा मसला बि दरपेश आहिनि। स्पीकर बिजली कंपनीज़ जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरू वज़ीर खे चयो त उन ते अमल दरामद न कर आया त अव्हां खे तकलीफ़ ॾींदासीं।
2: डाउल हक में 8वीं तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है
0: सूबनि जे सरहदनि बाबति क़ौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबलीअ मां 2/3 जी अक्सरियत ज़रूरी आहे। ज़ियालक 8वीं तरमीम ज़रिए आईन खे तब्दील कयो हो जंहिंखे दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबनि जे सरहदनि में तब्दीली बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे। सदर बि तरमीम ते सूबे जे मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरांगे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरीं ई अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे अवाम सां गॾु बीठल आहियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold-based financing.
2: Zindagi guzario, etmad sa Quran ke samji, budhanda raho. Dr. Farhat Hashmi jo program Ta'limul Quran, rozano subhu 9:55 te, sirf GFM 88 network te.
0: Abhi budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6. सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान

0: टंडवा धाम मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारड़ीअ खे जिंसी ॾाढाईअ बैदि क़तल करण जो इनकशाफ़। नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार, ॾोह जो इतराफ़। पुलिस मूजिबि अंजुम मल वासी पंजनि वरियनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो। वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारड़ी सां ज़्यादती तस्दीक थी। जवाबदार कासिम कंडवाणीअ खे गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
1: हुकूमत पेट्रोल महांगो करण जो नओं रिकॉर्ड क़ाइम करे वरितो। पंजे ॾींहनि ते पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरक़रार। पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 पैसा महांगो थियण बाद 375 रुपया 82 पैसा फी लीटर थी वियो। डीज़ल 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण बाद 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर ताईं पहुची वियो। ट्रांसपोर्टर्स जे पेट्रोल महांगो थियण जो जवाबु ॼाणाईंदे भाड़नि में घाटे टोल बात करे छॾी। खाद खुराक वारनि शहरनि जा अघ बि वधी विया। शहरी सख परेशान। सफ़र में शहरीअ तार जो एहतियाज। अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो।
0: इंसाफ़ जी वक़्त सिर फरहमी ज़रूरी आहे। ज़िली अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर करणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदी चयो आहे त ज़िले अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾीअ वारी हैसियत रखनि थियूं। नौजवाननि जजिस बहितर अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरहमी यकीनी बणाइनि।

परेशान हैदर मेजर शहीद राजा अज़ीज़ भटी जी एक वर्सी सदर वजीर आज़म बेन तारा भेट आवेश सदर आसिफ गदारी पैगाम में शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भटी वतन के दिफा में पैंजी जान दई छदी संदस कुर्बानी वतन की मिट्टी ए तकदस लाए रोशन मिसाल आ।

0: आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जे बहालीअ वारी तारीख़ दौरान शहादत माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। वारसन ऐं पीपी अगौणनि जी खैरपुर नाथनि शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी, शहीदनि खे भेटा पेश। पीपल्स पार्टीअ जे अॼु शाम के इन शाह में जलसो बि थियल।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी
3: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए

0: और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: कोशिश लिखी गई जरूरी समझी मुंह कई कोशिश लिखी वे मुझो सुकून तू ही फिटाए हलो वे तुझे हुसन रंद के समझी न तो सका तुझे हुसन रंद के समझी न तो सका मुर्की अखियों अखियों से मिलाए हलो वे तुझे हुसन जो जलवो आ हुरन परन मिसल तुझे हुसन जो जलवो आ हुरन परन मिसल महजूर जो ख्याल मताए हलो वे GFM नेटवर्क प्रोग्राम आहे म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती संगत माता ने पानी मेहमान गुलाब खान गोहना मुझे बेटा सही कड़ा हाल मान ठीक है तो वैसे ही आवाज में दला तला तुम सभी मुझे बारे में भेनर आखिर खैरियत कई हूँ असि दुआओं तुम सा हर वक्त हर हंध कद कद हूँ अल्लाह तला तुम सदाई खुश है आबाद रखे कदें भी दुख दिन तो सदाई खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हर जुमे के ऑन एयर किया वो है पर शेड्यूल तब्दील थियण के करे हाँ तुम प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हर छंछर जी यारह वगे का वी एक वगे तीन बुझी सकता ही हफ्तेवार प्रोग्राम है हफ्ते में एक दफो है जो पैर जुमे के ढीद हो हाँ छंछर के ढी यारह वगे का एक वगे तीन ही ऑन एयर किया वो इन प्रोग्राम में छा हों इन प्रोग्राम में होंद है तथा मिठी मिठी गाल अलावा मोकिल प्यार भरिया मैसेजेस अलावा तहजे पसंद की चूंड मौसीकी जी दिल फरेब मौसीकी लगे अजो के प्रोग्राम में भी सेम इन ही है तमाम बेहतरीन मौसीकी है प्रोग्राम में शामिल थन्दा तो उनके चार चंड लगी वा तुम मैसेज असि प्रोग्राम की सूह होंद मैसेज करण के लिए तरीकेकार सहलो है आसान है पैं मोबाइल फोन राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो ए मारो लिखो स्पेस स्पेस का लिखो पाजो नालो पांजे गोठ या शहर नालो लिखी करे मोकलो असान 888 1

मिठा साईं असां सां न सिर्फ़ मोरो वारा बल्कि पूरे नेटवर्क जा समूरा जेके लिसनर्स आहिनि उहे कॾहिं सखल लाड़काणो मीरपुर ख़ासि मोरो मटियारी मातली सकरंड ऐं मेरापुर वारा बि प्यारा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मूंखे यादि आहे त मुंहिंजो जेको जुमे वारो शो हूंदो हुयो हुन में तक़रीबन सभिनी स्टेशनुनि तां मैसेज ईंदा हुआ, पर जेको अॼु ई मुंहिंजो पहिरियों शो आहे ॾिसूं था त जेको 11 वॻे खां 1 वॻे ताईं छंछर जे ॾींहुं हाणे थींदो त ॾिसूं था उन में उहे जेके मुंहिंजा जुमे वारा लिसनर्स आहिनि छा उहे मैसेज करे ऐं मूंखे ॿुधाइनि था त वाह असां अञा थोरी ॿुधूं पिया था। ऐं जेके रेडियो जा असांजा पुराणा लिसनर्स आहिनि जेके सदाई असां सां जुड़ियल रहंदा आहिनि त उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो स्पेशल प्रोग्राम आहे, उन्हनि जी पसंदि जो प्रोग्राम आहे, उन्हनि जी पसंदि जी हिन में मौसीकी हूंदी, उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल हूंदी। ऐं उन खां अलावा हिन प्रोग्राम में ईंदड़ जेके असांजा शो थींदा उन्हनि में मां कोशिश कंदो आहियां, हिकु त लाइव कॉल खां यकीन कयो मां ख़ुदि हिन खे अवॉइड कंदो आहियां त लाइव कॉल न कयां न दोस्तनि सां मैसेजनि ते कचहरी कयां, पर ईंदड़ वक़्त में अगरि ज़रूरत महसूस थी त तव्हांजी हिन शो में लाइव कॉल बि कयो वेंदो, पर अॼु लाइव कॉल न आहे, अॼु सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मैसेज आहे। त मैसेज करण जो तरीक़ेकार हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां ॿुधायां थो, पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888

त प्रोग्राम जे आगाज में हदीका कयानी जो खूबसूरत आवाज आहे उहो शामिल कंदासीं शाह लतीफ़ भिटाई जो आहे कलाम। शाह लतीफ़ भिटाई सिंह जे उन्हनि अज़ीम शख़्सियतुनि मां हिकु अथव जिन पंहिंजी शायरी फ़िक्र ऐं सूफ़ियाना तालीमात वसीले सिंध जी सकाफ़त ॿोली ऐं इंसान दोस्तीअ खे अमर बणाए छॾियो। शाह साहिब जो नालो सिंध जे तारीख़, अदब ऐं रुहानियत में वॾी इज़त ऐं एतराम सां वरितो वञे थो। संदसि शायरी रुगो न सिर्फ़ सिंध जे माण्हुनि लाइ पर सॼी इंसान ज़ात जे

ऐं मोहबत ऐं अमन ऐं भाईचारे ऐं सचाई जो पैगाम खणी ईंदी आहे। शाहदुल लतीफ़ भिटाई सिंध जो सिर्फ़ शायर न पर सिंध जी रूह, सकाफ़त ऐं फिक्र जो अज़ीम तर्जुमान आहे। संदसि शायरी सिंध जी सुञाणप ऐं इंसानियत लाइ जे करे चइजे त हिकु लाज़वाल पैगाम आहे। ऐं जेसि ताईं सिंध जी ॿोली ऐं सिंध जी सकाफ़त ज़िंदा रहंदी न, तेसि ताईं शाहदुल लतीफ़ भिटाई जो नालो ऐं फिक्र बि हमेशा ज़िंदा रहंदो। त अचो गंजी इंजॉय कयूं था हरीका कयानी जो ही ख़ूबसूरत आवाज़।

अधिका कहिं जो खूबसूरत आवाज़ ऐं अवांजो सुंदर तमादो त मुंहिंजा मिठा साईं दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि हुननि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं। घोट दूरो ख़ान भेण खां शौकत अली भेण पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, वॾी महिरबानी अदा शौकत। तव्हांजो मैसेज मुंहिंजे प्रोग्राम जुमे वारे में बि ईंदो आहे ऐं छंछर वारे प्रोग्राम में बि आयो आहे, तंहिंजो मतिलबु तव्हां जीअं FM 88 नेटवर्क जा रेग्यूलर लिसनर आहियो। महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। नादिर अली भेण खे हुन सां गॾु आहे, अली गुल भेण हुन सां गॾु आहे ऐं चवनि था अदा आपका शो बहुत अच्छा है ऐं मास्टर मंज़ूर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, मास्टर मंज़ूर जो कलाम बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं हुन खां अलावा असांजे प्रोग्राम में शामिल आहे मोरो शहर जे कलहोड़ा कॉलोनी खां फैज़ान अली कलहोड़ो। ऐं फैज़ान चवे थो त सर तव्हांजो पुठो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: अगर चाहिए तो आर्च आर्च एलोवेरा डार्क स्पॉट्स को बनाए आर्च ब्यूटी क्रीम
3: इन ताकत के साथ जैसे ही

0: एंड और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सुंदर जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: गुरदन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण सॉलिज खारिश

0: अपॉइंटमेंट और वधिक मालूमात लाए हियरी राप्तो करियो 03-26-22-00-440
1: छा अवां अच्छन वारन खां परेशान आयो पेश आहे आर्ट्स क्रीम हेयर कलर पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट्स क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्ट्स क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्ट्स क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
2: हेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही रब्ता करें आगा जब्बार 03009312700
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: GFM 88 नेटवर्क जिंदगी आवाज
4: जिसमें इरशाद मंडन बुधाई आवा के

शमन अली मीराली जो खूबसूरत आवाज ऐं अवां जो सुंदर समातूं त दोस्तन खे मां ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती जी एफ एम एच ए नेटवर्क तां हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे। त दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा रहूं। साजिद अली मकली थट्टा खां पंहिंजे प्रोग्राम ते चयो, अस्सलाम वालेकुम डियर, नाइस शो। वालेकुम अस्सलाम डियर, थैंक यू वेरी मच। तव्हां ठटे खां ॿुधी रहिया आहियो, असांखे तमामु घणी महिरबानी आहे तव्हांजी, थैंक यू वेरी मच। हफ़ीज़ सोलंगी फ्राम मोरो खां असांजो प्रोग्राम ॿुधे थो, चवे थो प्रोग्राम तमामु सुठो आहे ऐं सलाम चवनि पिया समूरा असां जेके लिसनर्स आहिनि सभिनी खे ऐं सभिनी दोस्तनि खे जेको कलाम अदा जन लिखियो आहे उहो चवनि पिया त डेडिकेट कयो। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो। नंढड़ी हिकड़ी ब्रेक आहे, ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मिठा मिठा प्यारा प्यारा मैसेजेस।

गुलाब लिगारी जो गोठ है विशाम खान रिंद का असो प्यारो भा शायर गाजी खान रिंद जो मैसेज आयो है उन सा गडा है फिजान ले रिंद चवन था सर दिल खुश कर दी आपने फरमाइश पूरी करो हाजिर था फरमाइश ताजी जरूर पूरी थी हाई पूरी कर दिलजाए कर बेहतरीन खुशबू लिगारी जो आवाज ढो सुठो है कोशिश कदस मुझे लाइब्रेरी में खुशबू लिगारी जो जो को सॉन्ग है को सुठड़ो पियल है त मां तांके उहो बुधरायां थो जरूर बुधराइंदासे एक गाल याद रखजो न सिर्फ तमाम बल्कि जेके भी असांजा लिसनर्स आहिनि उहे समूरा असांजो सरमायो अथव सरमायो बि इन आहे जो अगर लिसनर आहे त रेडियो बि आहे न मुंहिंजा साईं त लिसनर्स खे असां तमामु घणी अहमियत ॾींदा आहियूं उहे असांजे लाइ तमामु ॿुधाईंदो हलूं था कंहिं ॿिए दोस्त जे मैसेज तरफ़ त असां सां गॾु आहे केरु आहे चवे थो सलाम गुलाब भाई आप अच्छा अठहतरि मोरी का राजा हमीर चंद्र किशोर कुमार पवन कुमार टेलर मास्टर हीरा लाल ऐं आकाश कुमार जानी हाणे मुंहिंजो शो जेको आहे न उहो फ्राइडे वारी जॻहि ते सेटरडे ते कयो वियो आहे सेटरडे ते हाणे तव्हां मूंखे ॿुधी सघंदा हिन ई साॻे टाइम असांजो हू शो हूंदो हुयो उन ई साॻे टाइम ते तव्हां मूंखे ॿुधी सघंदा तव्हां दिलजाए कयो बाक़ी जुमे वारो शो गुज़िरियल ॿिनि हफ़्तनि खां वठी न थी सघियो हुयो हुन जो सबबु इहो आहे त ही गलोक वारी कैफ़ियत बाबा असां बि रुगो तव्हां न आहियो थींदा अच्छा इहो किथां खां आहे मूंखे हिन ॻाल्हि कोन आई आहे राजस्थान मूंखे ॿीहर मैसेज कजो जंहिंमें वाज़े तौर जेको आहे न लिखी करे ॿुधाइजो त पुलजी स्टेम जा वेठा कयो सजाद अली अस्सलाम वालेकुम महिरबानी तव्हांजी तव्हां बि असांजे शो में शामिल थिया आहियो त हिन वक़्तु खुशबू लिगारी जी आवाज़ जे तरफ़ हलंदासीं उन खां पोइ हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जे तरफ़

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular. Mitti jo
7: वासी पंजनवरन जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो। वाक्य शकी हुजण ते पोस्टमार्टम कराए वियो त ॿारीअ सां ज़्यादती तसदीक थी। जवाबदार कासिम कुंडवाणी खे गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज
5: रखीजे सजन तो सा यारी अथम, रखीजे सजन तो सा यारी अथम, मुसीबत में हिम्मत न हारी अथम। रखीजे सजन तो सा यारी अथम, मुसीबत में हिम्मत न हारी अथम। अची न अची तू अंगण यार मुझे, अची न अची तू अंगण यार मुझे, मगर वाट सारी बुहारी अथम। दई बेदिलीअ खे पंहिंजी दिल मुफ़्तमी, दई बेदिलीअ खे पंहिंजी दिल मुफ़्तमी, चवां छो त कंहिं दिल अज़ारी अथम। जोखे पंधन जो ढिघो दास्तान आहे, जोखे पंधन जो ढिघो दास्तान आहे, चरी दिल ईअं चई सुमारी अथम।

ॾींहं यारहें वॻे खां वठी हिकु वॻे ताईं जी एफ एम नेटवर्क ते हर कयो वेंदो आहे, जंहिं में असां सां गॾु हूंदा आहिनि सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ासि मातली मटियारी मोरो मेहरापुर ऐं सकरनि वारा प्यारा प्यारा असांजा लिसनर ऐं असांजी हिन शो में हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं आहे पर मोकिलियल प्यार सारा प्यार भरिया मैसेजिस ऐं हुन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी मिठाई तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। ज़रिया एस एम एस ऐं एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जो राइट पेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं माण्हू लिखो स्पेस जो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा था। ॻोठ उमेंद अली गरदारी खां ग़ुलाम सरवर बागाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सर अला कंदो ख़ुशि हूंदव सदा अदा आमीन। अलाह साईं तव्हांखे बि ख़ुशि ऐं आबाद रखे। स्पेशली मां तव्हांखे भाउ ग़ुलाम सरवर बागाई साहिब तव्हांखे पंहिंजे हिन शो में भलीकार चवां थो। थैंक यू वेरी मच, तव्हां असांजा पुराणा लिसनर्स आहियो, हमेशह असांजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहियो। थैंक यू। हुन जे लाइ शमन अली मीरअली जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त मुंहिंजा मिठा साईं शमन अली मीराली मां ऑलरेडी प्ले करे चुको आहियां, ॾाढो सुठो हिकिड़ो सॉन्ग हो, पर मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे शमन अली मीराली जे कलाम शमन अली मीराली जो कलाम ज़रूरु ॿुधायां। ऐं अदा जन डेडिकेट जेको कंदा उहो बूरो खान लाखो आज़िज़ अमानुल्लाह विस्तड़ो खे। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू वेरी मच, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। ॻोठ दलेल खान ज़रदारी खां हाजी सावल ज़रदारी पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो चए थो सर सलाम, प्रोग्राम वेरी नाइस ऐं डेडिकेट करे थो ग़ुलाम सरवर बागाई बूरो खान लाखो खे। अदा सावल जरदारी साहब थैंक यू, लख एहसान लख कुर्ब तव्हांजा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, हुन जे लाइ तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं खोड़ सारो प्यार अवां जे लाइ इल्ताफ़ चवां था। योर शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अदा तव्हांखे असांजो शो पसंदि अचे पियो, हुन जे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा अहसान ऐं तव्हांखे मां पंहिंजे स्पेशली पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार बि चवां थो। ऐं लगारी अच्छा बिशाम खान रिंद खां चयो आहे, अदा तव्हांजी फरमाइश असां पूरी कई आहे ऐं उमेद आहे तव्हां उन सॉन्ग खे इंजॉय कयो हूंदो।

जिंदगी एक डिघो सफर है जैमें कदें खुशियों जहा लम्हा अचन था तो कदें दुख परेशानियों आजमाइशन से मुंह दियण पवे तो सफर में जैसे को सचो मुखलिस वफादार साथी गड हुए तो दुखिया रस्ता भी आसान महसूस साथ सिर्फ कें भरसा बीहण जो नालो ना है पर साथ जो मतलब है दुख में हौसलो दियण खुशी में खुश दियण मुश्किल वक्त में हथ न छड़न खामोशी के भी समझण सचो साथी वो हों जो वक्त के बदलजण से पांजो रवैयो न बदलाए जिंदगी में दोस्त शोहरत आसाइशूं पांजी जाए ते अहम आइन पर एक मुखलिस साथी की मौजूदगी उन सभिनी का वधीक कीमती हूंदी आए जद इंसान मायूस थी वञे रस्ता बंद नजर अचन उम्मीद खत्म थियण लगन तदें एक मोहब्बत भर जुमलो एक सचो साथ इंसान के बीहर बीहण की ताकत दी सके तो जो जुमलो हों तुझो हो साथ त सफर में थकावट महसूस नथी थे त तुझो साथ हुए तो दुख भी अधूरा लगन था खुशियों बीणू थी वन थियं तुझो साथ हुए तो जिंदगी के हर मोड़ से वो यकीन रहे तो अकेला ना आयो जिंदगी के सफर में अड़ा मानू हमेशा साण हुजन जिनो साथ मतलब परस्ती का पाक मोहब्बत से भरपूर वफादारी से मजबूत हुए अड़ो इजहार कर रही है फरजाना परवीन भी तो फरजाना परवीन जो ही बेहतरीन सॉन्ग बुध।

0: It's 12:30 p.m. This time to It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream jo deep clean kare aur de 4 guna brightness chamak aise diamond skin jaisi Hame Diamond Glow Bleach Cream
2: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain isiliye sona laya hai NPS 3 ki taqat ke sath isme maujood phosphorus de jadon ki badhotri aur phailav mein izafa aur sulfur nitrogen ki afadiyat ko badhaye jisse fasal ko ibtidai marhale se hi zaruri ghizai ajza mile iske har dane mein teenon ajza ki yaksa maujoodgi se fasal ko zyada se zyada fayda pahunche jisse ho paidawar mein izafa aur kisan ko mile zyada munafa 3 ki taqat mile fasal bharpoor khile
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुंदर जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो

मूंखे न उहे बि इंतज़ार कंदा हूंदा। दादा गुलाब लाइ छो असांजा मैसेज पढ़ण में ही देर करे रहियो आहे, त मुंहिंजा मिठा साईं देर बिल्कुल बि न आहे ऐं टाइम अची वियो आहे तव्हांजा मैसेज पढ़ण जो। घोट हाजी दलेल ज़रदारी खां असांखे ॿुधे रहियो आहे, हाजी सावल ज़रदारी चए थो सर सलाम, अदा वालेकुम सलाम, ऐं चवनि था प्रोग्राम वेरी नाइस, थैंक यू अदा, लख एहसान लख कुर्ब तव्हांजा, मुंहिंजा भाउ तव्हां प्रोग्राम खे पसंदि करे रहिया आहियो। ऐं अदा जन सलाम चई रहिया आहिनि गुलाम सरवर बागाई ऐं भूरो खान लाखो खे, त अदा लख महिरबानी तव्हांजी, करोड़े करम जो तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। गुलशेर बबर पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, उन सां गॾु आहे मुज़म्मिल बबर गोठ अलाह वरायो बबर खां, त महिरबानी अदा गुलशेर तव्हांजी, मुंहिंजे भाउ जो बि नालो गुलशेर आहे ऐं राम जा भाउ आहियो, थैंक यू। पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, उन जे लाइ तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी भाउ। किथां खां तव्हां ॿुधो पिया इहो जेको अलाह वरायो बबर जो गोठ आहे, इहो किथे आहे, कहिड़ी स्टेशन खां तव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो, इहा असांखे ख़बर न आहे, इहो असांखे ज़रूर ॿुधाइजो ॿुधाइजो। हफ़ीज़ सोलंगी मोरो शहर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो जानी गुलाब छा हाल आहे, त जानी मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, तव्हांजी दुआऊं आहिनि। चए थो अदा प्लीज़ प्ले मुमताज़ मोलाई हथ मथे कयासीं, अदा इहो मुमताज़ मोलाई जो मुंहिंजे ख़्याल में कलाम न आहे, बरहाल मां तव्हांखे प्ले करे ॾियां थो। ऐं चवनि था त पहले में FM सुनता था लेकिन आपकी वजह से अब शामिल भी हो रहा हूं, अदा इहे तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, इहो तव्हांजो प्यार आहे जेके असांजा ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि सभिनि जो जेके असांजे चवण ते असांजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहिनि ऐं पंहिंजी मौजूदगीअ जो असांखे अहसास ॾियारींदा आहिनि। ऐं असांखे यकीन कयो हर आरजे जी पंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी तलब, पंहिंजी पंहिंजी ख़्वाहिश ऐं पंहिंजो पंहिंजो नज़रियो हूंदो आहे। मुंहिंजे नज़रिये मुताबिक़ मुंहिंजे शो में जेतिरा मैसेज ईंदा आहिनि त मूंखे उन जी तमामु घणी ख़ुशी महसूस थींदी आहे, मां इएं महसूस कंदो आहियां त हा बिल्कुलु माण्हू मूंखे पसंदि करे रहिया आहिनि, तॾहिं मूंखे मैसेज करे रहिया आहिनि। त इहो तव्हां असांजी हौसला अफ़ज़ाई कंदा आहियो, असांखे बि शो करण में तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे, उन जे लाइ असां तव्हांजा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ प्ले सॉन्ग तूं मुंहिंजो सनम मां तुंहिंजो सनम, वाह साईं वाह। अल्ताफ अली गाडाही बलोच कराची खां यार तव्हां मूंखे चयो आहे, उहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं पर पहिरियां था हथ मथे कयूं, त इहो बि मशहूरु कलाम ॾाढो हलियो, हथ मथे कयासीं तूं ॾाढो आ, इन जे करे त ॾाढा जेके आहिनि न माण्हू उन्हनि खां बाबा बचणु घुर्जे। त तव्हांखे मां ॿुधायां थो पने अकल बि पपन भुलो जो कलाम, ऐं इहो अदा जन फरमाइश बि कई आहे, ऐं उमेदु आहे त सभु गॾिजी हिन खे इंजॉय कंदा, ऐं उन खां पोइ तव्हां नंढड़ो हिकिड़ो ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ वरी वापसि जंहिं महिल ईंदासीं त पोइ कलाम हलाईंदासीं, तूं मुंहिंजो सनम आहे मां तुंहिंजो सनम आहियां।

0: It's 12:45 p.m. It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Abhi Budhopya GA Hyderabad Matyari FM 91.6 Sindh jo awaaz.
5: O pita ja pitai pita te vasai noor mujho to
4: Sindh jo awaaz budhanda raho.

नंढड़ी ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि में तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ खां भलीकार आहे ऐं छो जो प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे ऐं हीउ प्रोग्राम असांजो हर जुमे जे ॾींहुं जुमे ते पहिरियों ऑनियर थींदो हुयो, हाणे हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो। ऐं GFM नेटवर्क जो प्रोग्राम आहे जेके असांजा लिसनर्स हाणे असांखे ॿुधण शुरू कयो आहे त उन्हनि खे बि असां इहो ॿुधाईंदा था हलूं त हीउ जेको प्रोग्राम आहे हीउ प्रोग्राम तव्हांजे पसंदि जो प्रोग्राम आहे, तव्हांजो प्रोग्राम आहे ऐं हिन में तव्हां शामिल थी करे असांखे हौसला अफ़ज़ाई कराईंदा आहियो। अहिड़ो ई असांजो हिकिड़ो भाउ जो मैसेज मुंहिंजे साम्हूं पियो आहे, दिलि चवे थी सभ खां पहिरियां हुनखे पढ़ां। वॾा भंड खां अली असकर भंड साहब पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो, सर स्पेशली तव्हांखे मां पंहिंजे हिन नेटवर्क जे शो में भलीकार चवां थो। ऐं साईं अली असकर भंड साहब जे बारे में जेका समूरा लिसनर्स खे मां हिन जो इंट्रोडक्शन करायां त जॾहिं खां मां रेडियो ज्वाइन कयो आहे तॾहिं खां वठी ही मुख़्तलिफ़ असांजे प्रोग्रामनि में मुंहिंजा जेके शो थींदा हुया या असांजे सीनियर्स जा जेके शो थींदा हुया उन्हनि में तमामु वध खां वध शामिल थींदो आहे ऐं एतिरे क़दुरु रुगो शामिल थियण आहे पर हिन सां रेडियो वारनि जी एतिरी मोहबत आहे, हिन जी रेडियो वारनि सां एतिरी मोहबत आहे जो अदा जन सां असांजा पर्सनल तालुकात बि रहिया आहिनि, मुलाक़ातूं रहियूं आहिनि ऐं तमामु घणो मां इंतिहाई थोराए थो आहियां त अली असकर भंड साहब जंहिंजा कुझु अहसान आहिनि जेके असांखे लाहे त कोन था सघूं पर ॻाईंदासीं ज़रूर। त महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं चवे थो सलाम त वालेकुम असलाम या अली मदद मौला अली मदद। चवे थो अदा ख़ुशि आहियो जी अदा शुक्र अलहमदिल्ला खंघ ज़ुकाम खां सवाइ बाक़ी अलाह ताला फर्स्ट क्लास कयो आहे, थैंक यू तव्हांजी महिरबानी। ऐं चवे थो अलाह साईं तव्हांखे आबाद कंदो। ऐं अदा जन सलाम चवनि पिया सर हाकिम अली जिस्कानी साहब, अली अनवर भंड साहब, गुलाब खान भेण ऐं चवनि था तुंहिंजी सिक सोहणा सडरायो। अच्छा ममताज़ लाशारी जे आवाज़ में अदा जन फरमाइश कई आहे।

असांजे शो में गोठ उमेद अली ज़रदारी खां हे गुलाम सरवर बागाई महिरबानी मुंहिंजा मेठा साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो लख कुर्ब लख अहसान ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम जी सूंहं बणिया उन जे लाइ तमामु घणा असां तव्हांजा थोराए था।

मुंहिंजा मिठा ताईं प्रोग्राम जो वक़्तु बि पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरियों हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो पंहिंजनि दोस्तनि जो पंहिंजनि मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखो ऐं कोशिश इहा कयो त तव्हांजे दिल मां कंहिंजे लाइ बि का बि अहिड़ी ॻाल्हि न निकिरे जेका हुन जी दिल आज़ारी करे वठे त पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कंदव पंहिंजनि दोस्तनि जो ख़्यालु रखंदव त तव्हांजी ज़िंदगी बि खुशहाल थी पवंदी ऐं पंहिंजे बचनि खे तालीम ज़रूर ॾियो जिनी बि दुनियावी तालीम ऐं न्याणियुनि खे बि ज़रूर तालीम ॾींदा कयो त वेंदे वेंदे मुमताज़ लाशरी जी ख़ूबसूरत आवाज़ तव्हांजी नज़र कयूं था ऐं उमेद कयूं था त नेक्स्ट शो थोरी अगरि हयाती साथ न हो त वरी पाण वेड़े तरीक़े सां गॾु हूंदासीं तेसिताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाही अलाए निगाहबा।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This project is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular. मिट्टी जो
7: किसान को धक्का दो मेरे को इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी
8: इंसाफ खबर साके जो मुजरिमानों की सजा मिले आज असान मिले
9: टंडरो आदम मां गुजरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारड़ीअ खे जिंसी ॾाढाईअ बाद क़तल करण जो इनकशाफ़ नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार ॾोह जो इतराफ़ पुलिस मूजिब अंजम मलवासी पंजनि वरनि जी दुआनसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारड़ीअ सां ज़्यादती जी तसदीक थी जवाबदार कासिम कंडवाणी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे जंहिं ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ इतिजाज़ तालका इस्पताल बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो
10: इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी बरे वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हम मुनसिब सां फोन ते राब्तो ॿिनि तरफ़ लाॻापनि समेत ताज़ी सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई इराकी परॾेही वज़ारत मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि खे तब्दील थींदड़ सूरताल ते ॻाल्हियूं कयूं राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो
9: यमन जे हुसैन बाबिल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो बाबिल मंदब जे अहम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबिल मंदब में हुसैन जे थाकनि खे बमबारी कई आहे जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे
10: आमने अर्मुज़ ते अरब मुल्कनि सां ॻाल्हियूं सूमर वारे ॾींहुं ओमान में थींदियूं ईरान तसदीक करे छॾी इस्माइल वकाई चयो आहे त आमने अर्मुज़ जो कंट्रोल ईरान वटि आहे तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बे अमेरिका आहे असां जंग वारी हालति में आहियूं सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा
9: हुकूमत पेट्रोल महांगो करण जो नओं रिकॉर्ड क़ाइमु करे वरितो पंजे ॾींहुं बि पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरक़रार पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 रुपया पैसा महांगो थी वियो 375 रुपया 82 पैसा फी लीटर मुक़रर जॾहिं त डीज़ल 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण बाद 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर ताईं पहुची वियो ट्रांसपोर्टर्स बि पेट्रोल महांगो थियण जो जवाब ॼणाईंदे भाड़नि में घाटे टोड़ वाध करे छॾी खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया शहरी सख़्त परेशान सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो
10: इंसाफ़ जे वक़्तु फरामी ज़रूरी आहे ज़िली अदालतनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर करणो पवंदो सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस आफरी चयो आहे त ज़िली अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं نوجوان ججز بہترین انداز میں انصاف جی فراہمی یقینی بنائیں
9: 1965 واری جنگ جے ہیرو شہید میجر راجا عزیز بھٹی جی 61 ورسی صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ بین پاراں بھیٹا پیش صدر آصف زرداری چیو تو شہید میجر راجا عزیز بھٹی جی قربانی وطن جی مٹی تقدس لائے روشن مثال آئے
10: जी बहाली वारी तहरीक दौरान शहादत माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे वारसन ऐं पीवी अॻवान जे ख़ैरनाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर जी शहीदनि जे मज़ार ते हाज़िरी भरी वई शहीदनि खे भेटा पेश कई वई पीपल्स पार्टीअ जो अॼु शाम
11: पॉसिबल है निकलने से पहले मेंटेनेंस करवानी हो ताकि रस्ते में
9: टंडरो मस्ती भरिसां परणियल नारी ऐं नौजवान पारां पसंदि करण लाइ निकिरण खां पोइ नारीअ जे वारसनि नौजवान जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾी जवाबदारनि अमजद फुलपोटर जे घर ऐं दुकान खे बायूं ॾेई साड़े छॾियो इलाइक़े वासियुनि मूजिबि अमजद फुलपोटरो घरवारीअ जे भाटीअ जी ज़ाल सां निकिरी वियो नारीअ जे वारसनि इल्ज़ाम मणियो त अमजद फुलपोटरो नारीअ खे अॻवा कयो आहे
4: GFM नेटवर्क पर KTN News.
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
12: खुशखबरी हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
13: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, उधर ना रहो।

तुम्हारी उम्मीद माजजों की बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजजों की बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजीव दंदला तमाम खूबसूरत नासुमी सोने समाज जो मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर जादू की बारिश रास और खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तारा तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर बोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर किया जा रहा है एवरेस्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें होने वाली है। यहाँ पर बातें भी जनाब इतनी सारी हम करने वाले हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो ही जाएगा कि मार्केट में अगर आप जाएं तो आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है।

यही चीज हमारी कंफ्यूजन का बायस बन रही होती है कि जब हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें समझ नहीं आती कि भाई हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना होता है, क्योंकि कई मरतबा जब हम बहुत ज्यादा वाली चीजें देख लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर जाता है। इसी वजह से अगर आपको पता होना चाहिए, आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जाएं तो उसके क्या और कितने सारे फायदे हैं, तो आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा और आप बस सीधे चले जाएंगे मार्केट और वहां से नाम लेकर तलब करेंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम ही काफी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हम आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें शेयर करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक रहता है इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो भी सदरा बताती है वो सारी चीजें सही होती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मजे की बात है कि भाई आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा वाला भी सीन नहीं है कि सिर्फ लड़के लगाएंगे या सिर्फ लड़कियां लगाएंगे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लड़के लड़कियां हर कोई इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है वो जाहिर सी बात है आप सब लोग जानते हैं कि कितना अच्छा कितना काम का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसे हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके जनाब, तो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सदरा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सदरा के साथ मौजूद है जनाब, इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए, प्रोग्राम में फन करने के लिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होठों पर 440 उल्के इस्तेमाल आने का काम करती है भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 उल्के इस्तेमाल लाते हो, यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम जो कि हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं कलाम पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस मुखातिब आप लोगों के पास हो, कलाम जो कि हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं कलाम पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस मुखातिब आप लोगों के पास होंगे तो आपको बता रहा मैं आप लोगों के

व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, लेकिन ऐसा भी एक दुनिया में जानवर पाया जाता है जो काले रंग का दूध देता है। बिल्कुल जी, आप लोग मुझे उसका नाम बताने वाले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं लाइक का सबसे पहले उसको लाइक ही नहीं करते हैं, तो वही लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये तीनों काम आप लोगों के हिस्से को फॉलो कीजिए। अच्छा, मुझे आज आप बताने वाले हैं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है। हाँ जी, उसका दूध जो है वो ब्लैक कलर का है। मुझे जल्दी से जवाब बताइए, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है तो भाई आपको वेलकम कहा जाता है। जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर किया करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो है वो बड़े सेटिस्फाइड हो चुके हैं, क्योंकि जिंदगी में अगर देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही होते हैं, तो जिंदगी में स्किन के प्रॉब्लम को जरा थोड़ा कंट्रोल में रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर एक प्रॉब्लम का हल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार हुई है जनाब। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप जब अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए तो वहां से नाम लेकर पाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है तो उसके लिए आपको नंबर बताऊंगी, उस नंबर के ऊपर आप रब्ता कीजिएगा। तो नंबर क्या होने वाला है जनाब? नंबर है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 033-27-38-43-09 ॿुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल कंदा, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, पंहिंजे ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणियो बाबा। ख़ूबसूरत रहण, ख़ूबसूरत ॾेखारण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, सो तव्हां बि पंहिंजो हक़ सां वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करणु स्टार्ट कयो। ठीकु आहे, ऐं यहां पर हमारे साथ गुलाम फातिमा मौजूद है जी। गुलाम फातिमा चन्ना हमें सुन रही है, और बिल्किस चन्ना हमें सुन रही है, अब्दुल कदीर चन्ना हमें सुन रहे हैं, कुरेशी गोट सखर से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम फातिमा तो भाई छोटी सी हमारी लिसनर है, बड़ी हमारी पक्की वाली लिसनर है, तो वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारा प्रोग्राम इतने शौक से। और जी फरवा गुल हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसे? कोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, और बलूचिस्तान से आप हमारे साथ मौजूद हैं, और ये हमारे साथ ही फरवा कहती हैं, आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है, भले महबूब कर माना लगी तो प्यारा जी काबिल, डेडिकेट स्पेशली आप और तमाम लिस्टनर्स के नाम। ओके जी, डन हो गया। और फहीम भाई हमारे साथ कहते हैं, फहीम शेख विसरी सारो लोक, विसरी सारो लोक चालन न विसरी तू, तोखे केडो मुंह सांढियो आहे साह में, वाह वाह वाह वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम, अदा चाल आहे, खुश आयो सफ़ा चा घुसलेट गलम मस जी इज़ाफ़ो थी वियो। कहते प्रोग्राम त लाजवाब आहे अमा वांगे, थैंक यू सो मच प्यारा सोना भा, तव्हां जो हाल अहिवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन, ऐं तव्हां गानो लिखियो आहे, बिल्कुल तव्हांजो गानो ॿुधूं था बाबा, गॾिजी करे ॿुधंदासीं। और हमारे साथ ये रशीद खोसो भाई कहां से सुन रहे हैं, इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूँ, और हैदराबाद से भी, अच्छा हैदराबाद से मतलब आप ही कटे सटे, कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है, कोई भी सिंधी सॉन्ग मुमताज मलाइका सुनाइएगा, हाजिर हाजिर। और फहीम भाई कहते हैं वाह दादा तमाम बेहतरीन कलाम आहे, और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो हाउ आर यू, हो फाइन बेटा, मां सफ़ा ठीक आहियां, चाचा तव्हां पंहिंजी हाल अहिवाल ॿुधायो, तबियत जो ॾिसो कीअं आहियो, ठीक ठाक। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाज़िर आहे, स्मार्ट भाई वेलकम वेलकम, कहते तूं ख़ूबसूरत माण्हू जो ज़िक्र कंदो आहीं पोइ पाण ॾे समुझां थो, हा भली तव्हां पाण ॾे समुझो तव्हां जे लाइ चवंदी आहियां। अच्छा मोहम्मद ज़मान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माई स्वीट बुआ जी, शो VIP है हमेशा की तरह, थैंक यू वेरी मच, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। और चाचा खालिद क्या कहते हैं,

बिल्कुल जी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, चाचा खालिद कहते हैं कि मेरी तबीयत में मजा नहीं रहता, आजकल फिर भी आपका डी स्किन ब्यूटी शो जरूर देखता हूँ, बस आप मेरे SMS रीड किया करें। बिल्कुल

ओके जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस ही देख रही थी, आपके फीडबैक्स ही, क्या बातें क्या बातें आप लोगों के मैसेजेस हैं। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भैया आपको वेलकम कहा जाता है। बाकी जो लोगों में साइलेंट हो गए सुन रहे हैं वो भी जनाब अपने होने का एहसास जला दिया करें। हाँ जी खामोशियां तो लीजिए और बताइए आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है ये भी बताइएगा। और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है। हाँ जी

भाई क्या बात है, गाना वाकई बहुत अच्छा है, गाना एंजॉय करेंगे। और साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी, गुड आफ्टरनून, हाय सिद्धार्थ, कैसी है? योर शो इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ताफ आपको वेलकम कहते हैं, और ये हमारे साथ कहते हैं सिद्धार्थ जी प्लीज सॉन्ग लगाइएगा, तू मुझो सनमा ही मा तुझो सनमा है, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके डन। अच्छा ये लिखते हैं, कैसी हो सिद्धार्थ? मुस्कान जी, खालिद सुमरो फ्रॉम मेहरापुर, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ, वेरी नाइस, और आपके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, और सॉन्ग सुना ममताज मोलाई का।

हेलो सुन रहे हो, आपको वेलकम के लिए पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सो बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में मिल रही है, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा। और शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद है, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद बाजी आवाज में। ओके जी भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं आगे, फोजिया का गाना प्ले कीजिए। ओके आई ट्राई। और चाचा खालिद जुनी जो हमारे साथ कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। ओके माँ चाचा तांजो गानों हलाइंदम तापानी सीट ते वेही रहो। और गोट मोहम्मद तैयब थिबू का हबीबुल्ला थिबू हमारे साथ कहते तवां जो शो वेरी नाइस आहे। सलाम तवां के, वालेकुम अस्सलाम तवां के, जो हाल अहिवाल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन है।

हार सिंगार भी कयो पर गड गड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे त वञो बाबा पुछी अचो मालूमात वठो नथी मिले त पोइ तव्हांखे छा करणु जेके नंबर तव्हांखे ॿुधाया आहिनि उन नंबर ते तव्हां हिकु दफ़ो कॉल या वरी मैसेज करे वठो उन्हनि खे चओ अदा भाऊ असांजे ॻोठ में कोन थी मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न कराईंदा त असां इस्तेमाल कीअं कंदासीं उन्हनि खे चओ अवेलेबल करायो ऐं असां इस्तेमाल कयूं सोणा सोणा थी वञो ऐं असांजी ख़ूबसूरती सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते हली वञे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे यानी कि तव्हां मर्द हज़रात आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि माइक्रो बीट्स आहिनि टू इन वन फार्मूलो आहे सो यूज़ कीजिए ख़ूबसूरत हो जाइए और अपनी ख़ूबसूरती को ज़रा पहचानिए।

अच्छा जी, गाना तो सुनेंगे, साथ साथ आप क्या कह रही हैं थोड़े से मैसेजेस भी पढ़ लेते, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा हो जाते तो फिर मसला हो जाता है। दर्द दिल कहती हैं कि कुछ दिन छोड़ नहीं सुना, कुछ मसरूफियात थी मगर चंदा भूली नहीं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया जब शो का टाइम होता था तो मिस यू। ओके जाना, बहुत शुक्रिया, वैसे हमने भी आपको बहुत मिस किया। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर वो शख्स जहन से उतर जाए। आए हाय हाय। अच्छा किशोर भाई, हिकड़ो सिंगतस या बस सिंगतस भी रहे, ये बुधायो। अच्छा सिकंदर अली कहते हैं शुक्रिया ऑल ग्रेट लाइफ वालों को। ओके 20 दिन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा। यासीन कहते हैं शो वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। और नसीम गुलाम दीन भाई हमारे साथ कहते हैं जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाज जानी पहचानी लगती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कहते हैं विलेज अली बख्श जखड़ो नूरियाबाद से नसीम जखड़ो भाई, आपको वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। दर्द दिल लिखती है कि उलझी हुई सी जिंदगी थके हुए से हम, थोड़ी सी आपसे गुफ्तगु और सारे मसले हल। अल्लाह मनाइए। अच्छा नसीम भाई लिखते हैं कि डी स्किन जिसने भी लगाई उसको नजर तो पक्की लगेगी। अरे भाई क्यों लगेगी नजर, ये बोलकर आप लोगों को रोकें तो नहीं कि वो डे स्किन ब्यूटी क्रीम ना लगाए, क्योंकि कुछ लोगों की ये ऐसी आदत होती है, मैंने देखा है उनको बड़ी ये चीज के ऊपर बिलीव होता है कि भाई बड़ी तेजी से नजर लग जाती है। ऐसे लगती है नजर, लेकिन ऐसा है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल तो रखना नहीं छोड़ेंगे ना, तो खूबसूरती का ख्याल रखिए और डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए।

पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुई, ताकि हम अवेलेबल करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। भाई हमें भी दिल जाए हो कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर फरवा कहती है, यहाँ पे अर्ज किया है, हाथों की लकीरों पर मत जा ए गालिब, नसीब तो उनके भी अच्छे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह वाह वाह वाह। अच्छा अली मोहम्मद भाई हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। इकबाल प्रकाश से हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जबरदस्त। और यासीन खान आपको बिल्कुल गाना सुनाते हैं, आप हमारे प्रोग्राम पे जरा बने रहिएगा। अखलाक भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके, कहते नाइस शो।

0: थैंक यू। नसीम भाई कहते हैं, हम पहली बार ऐसा जानवर सुन रहे हैं जिसका दूध काला है, क्या हम दूध पी सकते हैं? नहीं नहीं, आप उसका दूध नहीं पी सकते। आप सिर्फ भैंस का दूध पीजिए, ठीक है? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा, यहाँ पर टाइम देखा तो टाइम हुआ है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी और साथ में न्यूज ब्रेक भी होने वाली है, तो आप कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि आपका हमारे साथ प्रोग्राम में पूरे पूरे 3 बजे तक का है, तो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Urea Granular. मिट्टी
8: है तंबू. मुखा आहे बाबर मदन में होसिन जे थाकन ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान होसिन जो वॾो नुक़सान थियो।
9: मुस्ते अरब मुल्कनि सां ॻाल्हियूं सूमर वारे ॾींहुं ओमान में थींदियूं, ईरान तसदीक करे छॾी। इस्माइल बकाई चयो आहे त अबना अरम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे, तेल क़ीमतुनि में वाद जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। असां जंग वारी हालत में आयाऊं, सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़राब ठहराउ जी हिमायत करण ते सख़्त नतीजा भोगणा पवंदा।
8: इराक में तेल की लाइन ते हमलन बाद सऊदी परदेह वजीर फैसल बिन फरहान जो आलमी इराकी हमनसिब सां फोन ते राबतो, बिन तरफन लागापत समेत ताज़ी सूरत हाल ते ॻाल्हि। इराकी परदेह वज़ारत मुंजो बिन्ही अॻवाननि खे तेज़ी तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं राबतनि में रहण ते इतफ़ाक़ कयो।
9: अमरीका जारियत बंदि खुली वेंदो, ओमान सां थींदड़ मुआदे ते सयूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िशान चयो आहे त सूमर ते थींदड़ इजलास में शरीक थींदड़ मुल्कनि जे ईरान ते हमला थिया आहिनि, अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदियूं ख़तम करणु घुर्जनि।
10: नमाज़ पढ़ने गया, पीछे से बच्ची गुम हो गई।
11: जी जी,
10: जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं, तो फिलहाल तो पीछे मिली। कौन क्या करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा, कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला, ना बगैर दाढ़ी वाला, ना मूंछों वाला वगैरह, कोई भी साथ नहीं देगा। जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें, बगैर दाढ़ी वाले भी करें, मेरे पे एहसान करो, धक्का दो मेरे को, इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो, तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
11: सजा मिले आज ऐसा
8: टंडो अध मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारीअ खे जिनसी ॾाढाई बाद क़तल करण जो इंकशाफ़। नींगरे जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार ॾोह जो एतिराफ़ कयो वियो। पुलिस मूजिबि अंजुम मिलवासी 5 वरियनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणी तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो हो। वाकिए शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो त ॿारीअ सां ज़्यादत जी तसदीक थी आहे। जवाबदार कासिम खे गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे। वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाकिए ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो आहे। तालका इस्पताल खे बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो कयो वियो आहे।
9: इंतसर फरहमी ज़रूरी आहे, ज़िलाई अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर करणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदीअ चयो आहे त ज़िलाई अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में एकनगीअ जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं। नौजवान जजस बेहतरीन अंदाज में इंसाफ़ जी फराहमी यकीनी बणाइनि।
8: 1965 वारी जंग जे हीरो शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी 61वीं वर्सी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि पारां भेटा पेश कई वई। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी क़ुर्बानी वतन जी मिटी ऐं तक़द्दुस लाइ रोशन मिसाल आहे।
5: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: खुशखबरी। हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन जो चेकअप इलाज तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आजमाए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलियत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: जिस जुड़ा है कलंदर
1: उसी खनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: इस्तेमाल करने के बाद खुशी हो जाएगी। सही वाले प्रोडक्ट बहुत ही कम लोग जब बता रही है तो उसके ऊपर अमल कीजिए, इससे जाएगा इतना अच्छा प्रोडक्ट है उससे जाती है। बिल्कुल सही बताती है। ओके जी, तो चाहे आप किसी हमारा शो सुन रहे हैं, किसी भी गोट से आपका ताल्लुक है, किसी भी जगह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल सी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया है सुनना, तो उनको भी वेलकम हो गया। और साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। बिल्कुल जी। और जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे पोस्ट पर आइए, हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम का खूबसूरत से लिसनर्स हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको मैं नंबर्स बता दी उनके ऊपर रब्ता आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई मरतबा जब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि भाई जान बताएं जरा आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है फिर नहीं, तो आगे से मुझे ये जो लोग कहते हैं ना कि बाजी असां वट तो कोन थी मिले, अगर तव वट कोन थी मिले तो तव्हां खे जो हेडी टाइम खां वठी मां नंबर ॿुधाईंदी अचां थी, त नंबर ॿुधाइण जो जेको मक़सद हूंदो आहे इहो ई हूंदो आहे त तव्हां बाबा उन नंबर ते राबितो करे वठो ऐं नंबर ते राबितो करण खां फौरन बाद ई तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां बि चाहियो था त बाबा असांजे करीबी जनरल स्टोर ते ॻोठ में अवेलेबल हुजे, त पोइ तव्हां छा कंदा, डायल कंदा 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे, तो फेस वॉश अञा थोरी थोरी जॻहियुनि ते अवेलेबल न आहे थियो, त जॾहिं फुल सफ़ा अवेलेबल थींदो पोइ फेस वॉश जे बारे में बि तव्हां सां ढेर सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं। पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं हाणे हर जॻह ते मिली रही आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वई आहे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां तव्हांखे फ़ाइदो वठणु घुरिजे। मां त बिल्कुल इहो चवंदा डी स्किन

क्रीम मां फ़ाइदो वठो बाबा इन डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाजी खूबसूरती जलाए सफ़ा घनी फायदेमंद है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग बड़े अच्छा हमें रिस्पांस भी दे रहे हैं। अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की जो है ना वो केयर और हिफाजत भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप अपनी रूटीन में जनाब एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स का जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा आने के बाद ही हासिल करते हैं। तो आपका एक तो टाइम भी बच जाएगा, दूसरा आपके पैसे भी बच जाएंगे। बस मुनासिब सी कीमतों में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, बस आप जाइए परचेज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करने जाएं तो निशानी के तौर पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो डब्बी है जब आप परचेज करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर आंटी का फोटो है, आंटी तो नहीं खैर से ये खातून है, लड़की है अच्छी खासी, तो उसका फोटो आपको मिल जाएगा। और जॾहिं तव्हां डॉक्टर माई जो फोटो ॾिसो त तव्हां समझी वञो बाबा ओ या अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका स्किन जा डॉक्टर हूंदा आहिनि उन्हनि बिल्कुलु तयार कई आहे, ऐं मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, इस्तेमाल करे सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे न सिर्फ़ खूबसूरती ॾींदी बल्कि तव्हां ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो, हिफाजत करो ऐं सोणा सोणा थी वञो। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कि मेरे कितने सारे लिसनर्स हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। 888-1 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, फेसबुक को जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। आज का जो सवाल है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उसने थोड़ा सा हिला के रख दिया है। खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने एक ने ही सही जवाब बताया, मुझे जितना मुझे मतलब नजर आया है तो एक इंसान ने उसका सही जवाब बताया और वो आप जरा देखिए कि किसने सही जवाब बताया है। और नसीम भाई कहते हैं कि मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब है ओके ओके। और जी नूरियाबाद से आप हमारा शो सुन रहे हैं नसीम भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा शमन का गाना नमन जो गानो यासीन खंड तां वेहरो बस पांजी सीट ते। अच्छा अखलाक भाई तव्हां बि टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे सैया बाबा सैया सैया, हाणे मां वधीक कुझु न चवंदा न त तव्हां ख़बर पइजी वेंदी त जवाब छा आहे। अच्छा उनके अलावा चाचा खालिद कहते हैं मुझे भी ये ओ हो करना सिखाए ना, बस जैसे मैं करती हूँ ना वैसे आप किया करें साथ साथ, तो आपको आ जाएगा बोल।

जो गानो लाए थे, आप बस थोड़ो सबर करो, सफा थोड़ो पित करो। नसीम भाई कहते हैं कि हम नूरियाबाद से आपका शो अच्छा ठीक है वेट करते हैं और आगे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बस मोहब्बतों के साथ हमारा प्रोग्राम सुना करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नूरियाबाद में मिलनी चाहिए और नूरियाबाद के जितने भी लोग हैं वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरतियां हासिल कीजिए और हसीन हसीन रहिए। यासीन कहते हैं कि मैं डी स्किन का शॉप लगाऊंगा। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, तो लाजमी लगाइएगा।

हांजी न ॻाल्हि में ॿिन्ही जी भलाई आहे, जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त ॿिन्ही जी भलाई हूंदी, समुझो त तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी, एॾी ख़ूबसूरती जेका तव्हां हमेशह हासिल करणु चाहियो पिया। अच्छा दर्दी दिल, थैंक यू सो मच स्वीटी, आप हमारे साथ हैं। अब्दुल जी कैसर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है मोहब्बतों के साथ। और अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक कहते हैं प्रोग्राम बुधू पया आदि सिदरा, थैंक यू वेरी मच सोना भा जी। जी अखलाक भाई, तव्हां ते मयार ई न, तव्हां पी बि सघो था। भई ये हाँ 1980 वाला जो ट्रेंड चल रहा है, इसने भी थोड़ा सा दिमाग खराब कर दिया है। खैर एंजॉय करने दो लोगों को। अच्छा एडी मिलानो हमारे साथ खैरपुर मीरत से, वेरी नाइस प्रोग्राम, सलाम आप एंड सबको, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम कहते हैं।

हांजी बाबा ये न क्यों डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर दुश्मन के साड़न चाहो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सोना थी करे पोता पाने दुश्मन के साड़ाए सको था बिल्कुल ही दुश्मन के साड़ायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर नायला खान हमारे साथ की थी। हाय सदरा आपी, मैं आपका शो मीरपुर खास से देख रही हूँ। शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज भी। थैंक यू वेरी मच नायला, आप हमारे साथ है। नायला मीरपुर खास में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी, तो आप जाइएगा परचेज कीजिएगा। अच्छा रमजान भाइयों में सुन रहे हैं, सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। रमजान भाई आपकी बहना ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, खुशबाश है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में परचेज करने के बारे में क्या सोचा या अन्य तीन मुझे गिफ्ट जी आश्रय में आयो मुझे गिफ्ट जी आश्रय में नवे हो बाबा वनो पान वी अचो

अच्छा दर्दी दिल वो तो ठीक है, आपने टॉपिक का जवाब दिया, लेकिन ये तो बताएं आपने किसकी कॉपी करी है? चलो जी, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। और ये किम यूना हमारे साथ है। किम यूना आ चुकी, कहती हेलो क्यूटी, हाउ आर यू, वेलकम मी, वेलकम कहती जी आपको दिल की अतां गहराइयों से। कहती है मैं कोरिया से हूँ और मुझे उर्दू आती है, अब बताओ मैं कौन, आप हमारी बोल दो, बोल दो। टूना फिश है आप हमारी।

वाह साईं वाह हकीकत है ना गाल में को शक कोने को पर जदी ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना पो ता साईं वाह वाह थी वेनी तमा एडा खूबसूरत थी ना तमा जे चेहरे ते जे की डार्क सर्कल्स आहिन रिंकल्स आहिन एकनी आहिन या एकनी जा निशान आता है ना सब चीजो खत्म थी ने तमा जी स्किन क्लियर थी वेनी बेदाग थी वेनी सोनी थी वेनी आई तमा चमकना वतना सो ग्लो करन चाहियो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी कर जे ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जी जी सबके गाने लगाएंगे टाइम से जरा इंतजार कीजिए थोड़ा सा वहीं भागी थे भाओ मुझको लगता है हाँ तुम्हारा दिसो चमन भी बताओ तो केंदू चमन वरतो किशोर भाई कहते हैं कि मैं भी पैसे बचाने के चक्कर में ले नहीं रहा कोई लेकर दे तो पैसे बच जाएंगे मैं नेक्स्ट टाइम जरूर लूंगा पंखा प्रॉमिस अच्छा पंखा प्रॉमिस कर चुके हैं अब तो मुझे लग रहा है कि गिफ्ट करनी पड़ेगी आपको वैसे मैं किस किस को गिफ्ट करूंगी एक को करूंगी तो दूसरा आ जाएगा तो फिर ऐसा है कि पैसे आप इतने ज्यादा मत बचाइए कोने तानन पैसे में बंगलो ठहराइंदा तां वनो ए तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो सही

0: अच्छा किम, यूना कहती हैं कि मेरे बिना तो शो फीका फीका लगता होगा। जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया मैडम जी। सनाल ऑफ लपोटरो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समाटो गोपांगे ते सिद्रा मेरी कमेंट्स। हाँ जी, तमाम जो कमेंट्स कहते हिक अगे आहे हसीन बियो वरी वारन जो चगु जेके रुखसारन ते खेचल कन थियो ओए तुंजे सुह के वेतल चार चंड लगाए छडन थियो। वाह वाह वाह वाह, नाइस नाइस। अच्छा सुनालो फिलपोटो, तमाम के असने प्रोग्राम वणी पयो, सो थैंक यू तमाम जो मोहब्बत हुआ है। अब्दुल गफार भाई भी असे गड मौजूद है, लाजवाब शो, थैंक यू जी। तमाम जे पाड़े में भी दिसो वाइस ओ बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी होंदव, सो वणो ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो।
1: हाजिर हुन जे लए सिरु सामो जदे मुजे दिल भर।
0: अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कारी बकरी अच्छो खीर त सुना था, लेकिन काला दूध आज पहली दफा सुनाए। अल्लाह जाई हुदा सवाल थी खड़ी वहां पर दिसो तो मुझे लिसनर्स के खबर ही कोई कैसे। चलो हाँ तक खबर पेजी, पर तांके डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी खबर आ, सो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इग्नोर न कयो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। और नायला कहती है आप ही सजा, मेरी अम्मी आपका शो सुन रही है और आपको सलाम दे रही है, बहुत शुक्रिया। आपकी अम्मी जान को वेलकम कहते हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं, थैंक यू। गानों तो एंजॉय कर गाने का फौरन बाद ही वनू था बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं उन जल्दी मोटी तुम करी वो इतने बैठा हो वही मोटा मैं सो स्टेटिंग इस्तेमाल कर हाँ खूबसूरती हथ में अव दी तक खूबसूरती हासिल करो वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज
7: सिंध के माथे का

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 आई 03108166111। 44 सालन जो तजुर्बो, हज़ारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS।

0: ਸਹੀ ਵਾ ਵਾ ਸਹੀ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ हाँ जी भाई वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आपको कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो आप अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे, तो आप मुझे 888 फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आकर हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके बारे में तो पूरे प्रोग्राम आप लोगों को बताते रहते हैं। कोई जरा सी भी अगर कंफ्यूजन आपके जहन में हो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से जान ले, पहचान ले और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।
1: सुबह 7 लगी ट्रीटमेंट अंते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: GFM 88
1: फिल्म की आवाज।
0: आप अच्छे से जान ले, पहचान ले और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।

हमारे साथ मौजूद हैं सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली 92 मोरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सदराव के साथ मौजूद है। चलिए जी, हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में मुखातिब हो चुके हैं, तो यहाँ पर जल्दी से आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए। तो सवाल को जवाब देने के लिए आप हमें जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अच्छा, तो अगर आप देश कंप्यूटर क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी हमारा प्रोग्राम सुना स्टार्ट किया है, तो ऐसा कहते हैं ना हमेशा कि भी खूबसूरती और खूबसूरत होना ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये दिल करता होगा कि भाई हम भी खूबसूरत दिखाई दें, हमारी खूबसूरती भी नजर आनी चाहिए लोगों को। आपके चेहरे पर जो ये निशानात आ चुके होते हैं, रिंकल्स आ चुके होते हैं, वक्त से पहले आप अपनी स्किन को देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई हमारी स्किन जो है काफी खराब हो चुकी है, और इसका कोई हल बताएं, इसका कोई सलूशन बताएं कि हम कैसे अपनी स्किन की हिफाजत कर सकें। तो बिल्कुल जी, आपको बताया जाता है कि खूबसूरत और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ मेकअप ही काफी नहीं होता, बल्कि दिन का आगाज एक अच्छे से स्किन के रूटीन के साथ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे अगर आप देखें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर हम आपको बताते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें एड की गई है जिससे आपकी ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ती बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती है। तो अक्सर आपने उन प्रोडक्ट का जो है ना वो सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिन प्रोडक्ट्स में आप लोगों को खूबसूरती भी मिले और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे, क्योंकि मार्केट ऐसा भरा पड़ा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि भाई आप लोगों की स्किन के लिए दावा तो करते हैं कि ये गोरा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, कोई सिंपल सा कोई प्यारा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें आपके पैसे भी ज्यादा ना लगे, टाइम भी ना लगे और आपको खूबसूरती भी प्रॉपर मिलती रहे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है। जैसे कि आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो भाई इतना हसीन सा निखार हासिल कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई फेशियल करा के आए हैं, कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं या फिर कोई महंगी सी आपने ट्रीटमेंट ली है स्किन की, लेकिन ये कमाल होगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं। ये दोनों जो चीजें ना, वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स, ये तमाम महंगे सारे प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है, और पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें तो बड़े खुश नसीब है, क्योंकि आपके पास भी मौजूद है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपकी खूबसूरती की हिफाजत करेगा और आप हमेशा के लिए खूबसूरत, हसीन और प्यारे हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रही है, और 2 दिनों में सिर्फ, बिल्कुल जी 2 दिनों में, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 दिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल चुके होंगे। और मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है, तो इस्तेमाल करते रहिए, अपनी खूबसूरती की हिफाजत कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियों को जरा वेलकम कीजिए।

हां जी भाई जान, इस बात में कोई शक नहीं, ॾाढो भलो गानो ॿुधो सी। फरमाइश हुई रात अहमदानी शायदि गाने जी फरमाइश कई, बिल्कुल ॿुधो सी। ऐं हीउ वारो सॉन्ग बि ॿुधंदासीं, फरवा फरमाइश कई हुई, फरवा फरमाइश कई हुई। ओके सो तव्हांजा कुझु फीडबैक्स आहिनि मोहम्मद समान भाई खे, नाइस सॉन्ग भाई शमन, थैंक यू बुआ जी, इट्स ओके प्यारे भाई। अच्छा ये कहती की मैं निदड़ी हूँ रे, मैंने शो को और तुम्हें बहुत मिस किया रे, बहुत शुक्रिया रे, और आप वापस आ चुकी है तो आपको वेलकम कहते हैं रे।

अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ असांखे कदें गिफ्ट मिलंदी थोड़ो थोड़ो भला आसरो दियो मां आसरो न दींदी आया कंहिंखे भी तव्हां पाण वठो मां हमेशा तव्हांखे इहा ई चीज चई आहे और नसीम भाई कहते हैं कि काश आप नूरियाबाद पर आरज़ी होती हमारी ख्वाहिश अल्लाह मां जिंदगी में करे नूरियाबाद कोन आई बस भा तव्हां मूंखे हिते ॿुधो या हुते ॿुधो ॻाल्हि साॻी आहे त मोहबतूं ऐं तव्हांजो नूरियाबाद में तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूमात वठिजो मिले थी कोन अच्छा सो स्मार्टू गोपांग आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी बहुत बढ़िया प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है हेलो जी हेलो अनवर भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है बढ़िया हो गया जी परवा आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है किशोर भाई कहते हैं कि सब तुझे भाव वांगुर होशियार थोड़ी आया ना बस मानो कदर नथा कन हाय ही अलग गाल है न न कदर आए कदर करण वारन वट तांजो कदर आए एड़ी भी गाल कोने का आई चवां जेके मानो 1980 में वञन पया हुनन के चओ थोड़ो हुतां संस्कार भी वठी अचन सही था चवल सही था जो संस्कार जरूरी है अच्छा मोहम्मद नूर गादी हमारे साथ है मेहर से आप हमारा शो सुन रहे हैं क्या बात है जनाब आपको वेलकम कहा जाता है और एहसन अली बुक्टी भाई हमें सुन रहे हैं एहसन भाई आपको भी खुशामदीद कहा जाता है मुजाहिद मलिक हमें सुन रहे हैं घोटकी से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है चाचा कहते हैं ठगियों ते केतरा ॾींहं हलंदो बेटा उहा ई ॻाल्हि चाचा घुमी फिरी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाज़मी लॻाइणी पवंदसि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो जेके जेके अञा ताईं वेठा सोचनि था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इलाही सारो फ़ाइदो तव्हांखे मिलंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणी ॾिसो पोइ ईअं न चओ त सिदरा भाजी असां तव्हांजी ॻाल्हि न मञीसीं जेका डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे न हर कंहिं इस्तेमालु करे सुहिणा थी विया बसि असांखे छॾे सो तव्हां बि वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते हुतां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूमात वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ईज़ी मिली वेंदी न बि मिली थी त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो आहे हुन नंबर ते राबितो करे वठिजो सही आहे

भाई हमारा शो सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से डॉक्टर वजीर अली भाई, कहते नाइस शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। सिकंदर है, सालार सिकंदर, आपको खुश आमदीद कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। और जी नजीर भाई कहते हैं विलेज मोहम्मद अली से डॉक्टर वजीर अली भाई, आपको थैंक यू कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। और स्मार्टू कहते हैं सिदरा मुझे भाई मुझे लगे तो यो तांजो ख्वाब कदें भी पूरो नथी वेंदो छो तो ये कदें थेणो ही ना है। अच्छा रसूलाबाद से अब्दुल सिंह चंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम अदी, कारे रंग जो खीर चलो तमा जवाब दिनो आ जे जो मुखे थोड़ो समझ में गाल कोन आए। सो खैर आ ताके चोंदा भली करी आया, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वरती तव कोन वरती तव यो बुदाया जो मुखे। और ये जी अल्ताफ बलोच जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज प्ले शमन, दर्द नहीं व्या दिलवारा मानू डेडिकेट अजरा कोसो बिस्मिल एंड यू। और कहते हैं जाग जानी प्लीज प्ले मास्टर मंजूर, हर जाए प्री हर महफिल मुखे तुझी कमी महसूस थी थे, डेडिकेट अजरा कोसो एंड यू। और जाग जानी चाचू कहते हैं डेडिकेट ये दूसरी फरमाइश है फरिया परवेज, ए जिंदगी तुझे ढूंढू का एडा मतलब फरमाइश एक प्रोग्राम में तां चाचा कहिया दोस्त ये कहीं गलत गाना एक गानो मानू फरमाइश कह डह डह गाने की फरमाइश करी सड़ो था नक्यो बाबा नक्यो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वरती अव को यो बुधाए जो मुख्य डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवे खूबसूरती में सफा इजाफो आने छींदी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवे चेहरे से रिंकल्स या फ्रिकल्स या निशानात या एक्नी प्रॉब्लम हर तरह से तवे महफूज रखी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल मर्द आयो खवातीन आयो हर कोई इस्तेमाल कर सके तो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश भी अवेलेबल है, अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना लगाया तो तुम फेस वॉश ट्राई करे सको था, मार्केट वनो मालूमात वेठो परचेज कर।

जी जी भलो गानू आ, भलो गानू आ। अच्छा एम अली मोरो सिटी से हमारी साथी, वालेकुम अस्सलाम, सो स्वीट सिस्टर सिद्रा, एफएम की फूल और खुशबू हमेशा बिखेरती रही कूंज, वहीद अली का सॉन्ग सुनाओ तेरी। अच्छा सही सही सही, हाँ तो खैर तुम गानों मत न हली सके तो तुम गानो पंज बजे वे प्रोग्राम बुधा ठीक है न तो सुबाने बुधी वेटासी। और हबीबुल्ला थेबू ये सॉन्ग बुधाए जो फौजिया सुमरो अगते तुम गानो लिखो है भाई हिकड़ो तो मुख्य मानू बुधाए जो गाने की फरमाइश न तो हाँ किशोर भाई न कही है बाकी तो हर कोई गाने की फरमाइश तो करे एडी फरमाइश न कहो मनड़ो मानू काड़ी काड़ी वजा। अच्छा ये ऐसे शो हमारे साथ है खालिद आलम और मोहम्मद खान हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू आप दोनों को वेलकम किया। चाचा तुम जो मां पढ़ो तो सही टॉपिक वारो कमेंट।

खूबसूरती के मामले में कुछ लोग थोड़ा सा पीछे होते हैं, और उनको जब ये पूछा जाता है कि भाई आप खूबसूरती के मामले में पीछे थोड़ा सा क्यों है, तो उनको यानी कि कहते हुए मैंने यही देखा है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमें सही गाइड नहीं किया जाता, सही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दुकानदार दे देते हैं जो हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन स्किन खराब हो जाती है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करने। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई आपको नहीं बता रहा है, तो आप एक मरतबा मेरे कहने पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके हर स्किन टाइप के लिए है, मेडिकेटेड फार्मूला है, और डॉक्टर्स जो होते ना स्किन के, उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। तो यानी कि ये चीज तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई हर तरह से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगी, हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखेगी, और हर तरह से आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बना देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सारे लोगों के लिए है, बस आप जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।

जी जी बिल्कुल, मैं ये गाना जरूर सुनूंगी जब सामने तुम आ जाते हो। वैसे ये वो तो नहीं जब तुम आ जाते हो सामने, या वरी ही को बियो हुंदो मुखे ये लगे थो। तो एटीज जा गाना शायद मु थोड़ा बुधा है। अच्छा उन्हें कहने बस सनाला फुल फोटो कहते हैं आपकी। अच्छा तमा शायरी लिखी आपके दीदार पर अगर मेरा अख्तियार होता, वल्ला ये रोज रोज होता बार बार होता। आय हाय आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया बाबा, रोज रोज बार बार ताकि मजो अची वे। अच्छा

0: ಬಾಣ ಬಲು ವೈಫ್ ಸುಟಿ ಎಸ್. हाजी नजीर हाजानो भाई सऊदी अरब से हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम भाईजान को वेलकम कहा जाता है. सालार सिकंदर कहते हैं कि एंड में टॉपिक के जवाब बताइएगा, बिल्कुल सी बताएंगे. थैंक यू आप हमारे साथ है. और नजीर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया भाईजान, आपको वेलकम कहते हैं. नसीम भाई कहते हैं हमने भी दिया था, क्या दिया था आपने. और उनका अलावा अनवर भाई कहते मोकलानी मोकलाइंदे अखिन में आया लुड़क लबंती अलविदा जो नाम हो दिल तायो पे बी रहो पर वक्त जो वो ही पैगाम हो. वाह वाह वाह वाह
1: बुधो आहे मू.
0: अच्छा हिदायतला कहते लगी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के काबिल भली महबूब माना कर. ओ यही गाल केस ताई माना कंदा. हाँ नेट तो वठनी पवंदव डी स्किन ब्यूटी क्रीम. आई नदी कहती लगी तो चंपन जे काबिल यह भी हकीकत. कुटकी जे काबिल. जी जी अनवर भा तू ये बस मोहब्बतू आन प्रोग्राम की चाय मोहब्बत से बुधंदा कर. अच्छा फहीम भा तुम फरमाइश हेड़ी कदा ना क्यों असा के आखिर में हलानी पवंदी है. नजीर कोसो भा असा बलोचिस्तान का बुधे पे मोहब्बतू प्यारे भाजू. और कहते हैं पैसे कमाने में वक्त लगता है मगर उससे खोने में कभी कभी एक गलत फैसला काफी होता है. और इसीलिए हर मौके को बहुत बड़ा फायदा दिखाइए. जरूरी नहीं कि उसे पकड़ लेना चाहिए, कभी बच्चा भी लेना चाहिए, कामयाबी होती है. अलाए छा हो कदे कदे तांजी थोड़ी गाल मुखे समझ में घट ही दिया है. इन का अलावा नदी कहती है आज गिफ्ट डे है क्या, सबको गिफ्ट चाहिए तुमसे क्यों भला. शीजा ने शॉप खोला है क्या, अगर मां दुकान खोलिया तो वाकई तहके गिफ्ट दिया. अला मुझे एडी वी दिल पर दुकान कोने न सो तो हाँ पांजी वो.

0: मुझे गालियों
1: गालियों नहीं गिलाऊं कंदी होंदी ध्यान ही बुद्ध जो ठीक है डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तुम तोहफो न दिनों तो लाजमी गिलाऊं कंदी बाबा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तोहफो गयो पानी प्रिय प्यारन के

अच्छा सो असांजी वञण जो टाइम थी वियो आहे, तव्हां खां मोकल वठंदासीं, इजाज़त खपे बसि हाणे तव्हांजी। ऐं सवाल जेको पुछो हुन अब छा हुयो, इहो तव्हांखे ॿुधरियाई घोड़ो हूंदो आहे न, हुन जो जेको खीर हूंदो आहे उहो ब्लैक कलर जो हूंदो आहे। हिन ते थोरी रिसर्च करे ॾिसूं था त इहो वाकई ब्लैक कलर जो आहे या माण्हुनि खे लॻंदो आहे, पर अगरि हा तव्हां ॾिसंदा त हुन जो जेको खीर हूंदो आहे उहो ब्लैक कलर जो हूंदो आहे, ॿुधरियाई घोड़ो। ठीकु आहे, सो बसि वरी तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थिए पई प्रोग्राम में, सो पंहिंजो ओॾो सरो ख़्यालु रखंदा। किथे का ग़लती थी हुजे त बाबा माज़रत कयूं था, जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो, को गानोड़ो शानोड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। मोकिलाणी न आहे सिलसिला में, सलामत अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: نورو.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
0: जी एफ एम 91.6।

0: कॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
4: वधे शहरनि जी साफ़ खत्म करे छॾी मुसाफ़िर गाॾियुनि जे भाड़नि में गाटे टोड़ वात
5: मेरी तो हर सेंस आशना फूड पांडा
6: जब लाइफ हैपेंस
4: पैसा फी लीटर विकामण लगो ट्रांसपोर्टर्स भी पेट्रोल महांगो थियण जो जवाब जणाईंदे भाड़नि में गाटे टोड़ वाध करे छॾी खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया शहरी सख़्त परेशान सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो

0: ओमान में अरब मुल्कनि सां सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआदे ते सहियूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमरीका खे पाबंदियूं नाकाम बंदीअ ख़तम करणु इस्माइल बकाई चयो त आबराहम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतुनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामतीअ बाबति सलाहकार इहो चयो आहे त न थींदियूं। कंट्रोल आलमी आबी रस्ते जी गश्त शुरू करे छॾी जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबुल मंदब में हुसैन थाकन ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी अरब परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हमनसब सां फोन ते राब्तो। बतरफ़न लाॻापन समेत ताज़ी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल। इराकी परडे॒ही वज़ारत मूजिब ॿिन्ही अॻुवाणनि खिते जे तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़ कयो।
1: नमाज पढ़ने गया, पीछे से बच्ची गुम हो गई। जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं, तो वहाँ किला तो पीछे मिली। कौन क्या करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा, कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला, ना बगैर दाढ़ी वाला, ना मूंछों वाला वगैरह, कोई भी साथ नहीं देगा। जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें, बगैर दाढ़ी वाले भी करें, मेरे पे एहसान करो, धक्का दो मेरे को, इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो, तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
2: इंसाफ खबर सागे जो मुजरिमानों की सजा मिले, आज असायो
0: टंडरो आदम मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारीअ खे जिन्सी ॾाढाईअ बाद क़तल करण जो इनकशाफ़। नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार। ॾोह जो एतिरा पुलिस मूजिब अंजुम मलवासी पंजनवरनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो। वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारीअ सां ज़्यादतीअ तसदीक थी। जवाबदार कासिम कंडाणीअ खे गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे। वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एहतजाज, तालका इस्पताल खे बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो। इंसाफ़ जी वक़्त सिर फरहमी ज़रूरी आहे। ज़िलाई अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बहितर करणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदीअ चयो आहे त ज़िलाई अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं। नौजवाननि जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरहमी यकीनी बणाइनि। 1965 वारी जंग जे हीरो शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी 61 वर्सी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि पारां भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारीअ चयो त शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी क़ुर्बानी वतन जे मिटी ऐं तक़दस लाइ रोशन मिसाल आहे। हाई कोर्ट सखर बैंक जे हुकुम ते आईजी सिंध जे फहमीदा पिताफ़ी केस जे जांच लाइ घोटकी आमद। जावेद आलम ओडो SSP आफ़ीस में DIG सखर नासिर आफ़ताब पठाण SSP सां गॾिजाणी करे ब्रीफिंग वरिती। आईजी सिंध जो दौरो मीडिया खां गुजो रखियो वियो। ज़रियनि मूजिब आईजी फहमीदा केस बाबति तफ़सील बि वरिता। आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जे बहालीअ वारी तारीख़ दौरान शहादतूं माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। वारसनि ऐं PP अॻवाणनि जी खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी। शहीदनि खे भेटा पेश। पीपल्स पार्टीअ जे अॼु खैरपुर नाथन शाह में जलसो बि थियल। टंडरो मस्ती भरिसां पढ़ियल नारी ऐं नौजवान पारां पसंदि जे

0: नारीअ जे वार सन्नो जन ऐं घर खे बाहि ॾेई छॾी। जवाबदारनि अमजद फुल पोटो जे घर ऐं दुकान खे बायूं ॾेई छॾियूं। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि अमजद फुल पोटो घर वारीअ जे भाइटे जी ज़ाल सां निकिरी वियो आहे। नारीअ जे वार सां इल्ज़ाम मड़ियो त अमजद फुल पोटो नारीअ खे अगवा कयो आहे। सखर में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ पीपल्स लॉयर्स फोरम जी रैली। वकीलनि हाईकोर्ट बार खां रैली कढी शहर जो गश्त कयो। अॻवाणनि चयो त सिंध खे टोड़ण मुल्क खे कमज़ोर करण जे बराबरि आहे। 1947 खां मुल्क में 4 सूबा आहिनि। वधीक सूबनि वारो राग बंदि कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे खां शाम 5 वगे ताईं। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM नेटवर्क पर यौम दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरियात। पाक फौज को सलाम।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, एयर और फ्रेश निखरा निखरा से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ नेशनल पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरियात। पाक फौज को सलाम।
1: कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है हमारा दी तो बेटे राजी होते हैं।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। उदरदा
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआहिदे ते सहियूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िशान चयो आहे त अरब मुल्कनि जे सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़त्म करण घुर्जे। इस्माइल बकाईअ चयो आहे त आबनाओरम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतुनि में वाद जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ीअ चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसैन बाबुल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबुल मंदब जे आम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा। यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबुल मंदब में हुसैन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़ामत। हमला खिते जे अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़तरो करार। सऊदीअ सां गॾु बीहण वारे अज़म जो वर्जा परॾेही तर्जुमान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइन ते ड्रोन हमलनि सबब शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। हमले सां खिते जो अमन ऐं इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो। मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे। नवनि सूबनि जे हवाले सां आवाम खां बि राय वरिती वेंदी। पीपुल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रद अमल ॾिनो। सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाला चयो त वफ़ाकी घरू वज़ीरनि सूबनि वारे मामलनि ते काबीना तोड़ी पार्लियामेंट में न आहे ॻाल्हायो। वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी न आहे।

0: इंतजार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाड़ी वाले दे विम मा उने के जब डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल महंगो थी या 3000 रुपया किराया वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बारो होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: आनु जे जी जंजाल थिया गाड़ी कडन जेड़ा कोन मानु परेशान लगा था
2: आवामी के लोग भी है भाई मानु परेशान है खुद कशन दे मजबूर है
3: महंगाई जो जो भूत है बोतल में निकली आयो गरीब मांग के डाल
4: पैसा मसन जा भूख तो मरन ता 500 कमायो ता 500 पूरा ही ना है कमाता से हो तो दे ऐसा गरीब फांसी आयो
5: थी रेवर आयो मसन दे वडा असर को दी आ ना सा जो रोजगार बंद थी वा
6: असर बुरो आ जाए ये पालो ना वो असर आ जुलम ना जो नी रोयो ता ना ला जा बात ते ता दे ना ला के बोलो
7: दाल चढ़े थी सब्जी दिसो चढ़े थी के चढ़े तो अटो दिसो 30 20 रुपया 40 रुपया थी
8: केर गरीब मानु कालो वठना
9: पेट्रोल के अघन में गाटे ट्रोड़ा बाद शहर की साप खत्म करे छी मुसाफिर गाड़ियों के भाड़न में गाटे ट्रोड़ा बाद खाद खुराक वाली शयूं भी महंगी थी वयूं खाद खुराक वाली शयन जा अघ भी वधी वया शहरी सख्त परेशान सखर में शहरी इताद जो एहतजाज अलामती जनाजो भी कढ़ियो वयो पेट्रोल महांगो थियण सबब अटो 30% खीर 8% मिर्च 16% बसर 150% गोश्त 15% डबल रोटी 8% महांगी थी वही शुमारियात खाते महंगाई वधण की तस्दीक कंदे चयो आहे त बिजली 25% एलपीजी 50% महांगी थी वही है पटाटा मुर्गी बेजा खंड सस्ती थी आए।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तवहा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: पाकिस्तान पारा सऊदी अरब के हमलन की मुसम्मत हमला खिते के अमन इस्तेकाम लाए खतरो करार सऊदी से गड बीहण वाले असम जो वर्जाओ वडे तजवान चयो है त सऊदी अरब के तेल लाइनन ते ड्रोन हमलन सबब शहरी भी जख्मी थे हैं। हमला आलमी कानून की भजकड़ी है हमलन से खिते जो अमन ए इस्तेकाम मुतासर थी सके तो मुल्क में नवन सूबन बाबत बहस हली रो है नवन सूबन जो फैसलो पार्लियामेंट के करो है नवन सूबन के हवाले से आवाम का भी राय वरती वेंदी पीपल्स पार्टी सूबन के मामले से जरूरत का रद्दमल डो सूबन जो मामलो पार्लियामेंट में इंदो तो नवन नून लीग पॉलिसी बयान दींदी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्दे वजीर आजम के सलाहकार राना सनावला है तो फाकी घरू वजीर सूबन वे मामले से कापी न तोड़े पार्लियामेंट में ना गालो व्यापारियों के सेमिनार में थियल गाल अहमियत जोगी ना है।

0: कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाडी वाला दे विम मा उने के जब डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल मांगो थिया 3000 रुपया किराया वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई बशर
1: मानू जे जी जंजाल थिया गाडी कढन जेड़ा कोन मानू परेशान लगा था
2: आवामी के लुटी थी आए भाई मानू परेशान है खुद कशन दे मजबूर है
3: महंगाई जो जको भूत आ बोतल में निकली आयो गरीब मांग के दा
2: पैसा असन जा भूख ते मरन ता 500 कमायो ता 500 पूरा ही ना है ते हुकूमत आ सो तो दे अस गरीब फांसी आयो
4: थी रहे वाला आयो असन ते वडा असर पोजी आयो ना ता जो रोजगार बंद पियो आ
5: असर बुरो आ जायो पालो ना ओटो असर जुलमा जदी रोयो ता मा लाज रात ते ता दे मा लाज
6: दाल चढ़े थी सब्जी दी फसले थी के चढ़े तो अटो दे तो 20 रुपया उसको 40 रुपया दी देर गरीब मानू कालो वसना
7: पेट्रोल जगन में घाटे टोड़ बाद शहरियन की सब खत्म कर छी मुसाफिर गाड़ियन के भाड़न में घाटे टोड़ बाद खाद खुराक वारी शयूं भी महंगी थी वयूं खाद खुराक वारे शहर जा अघ भी वधी विया शहरी सख्त परेशान सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाजो भी कढ़ो वियो पेट्रोल महंगो थियण सबब अटो 30% खीर 8% मिर्च 16% बसर 125% गोश्त 15% ऐं डबल रोटी 8% महांगो थी वई शुमारियात खाते महांगाई वधण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त बिजली 25% एलपीजी 55% महांगी थी आहे पटाटा मुर्गी बेज़ा ऐं खंड सस्ती थी आहे
8: नमाज पढ़ने गया पीछे से बच्ची गुम हो गई
9: जी जी जी
8: जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं तो वहाँ खिला तो पीछे मिली कौन क्या करेगा कोई कुछ भी नहीं करेगा मैं गरीब हूँ ना ऐसे ही मर जाऊंगा कोई साथ भी नहीं देगा ना शरीयत वाला ना बगैर दाढ़ी वाला ना मूंछों वाला वगैरह कोई भी साथ नहीं देगा जो दाढ़ी वाले वो भी करें बगैर दाढ़ी वाले भी करें मेरे पहचान करो धक्का दो मेरे को इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी
9: इंसाफ खपे असांखे जो मुजरिमान खे सजा मिले ऐं अॼु असांजो त थी वियो कई ॾींहंनि सां बि थी वेंदे
7: टंडो आदम मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल बाड़ी खे जिंसी ॾाढाई बाद क़तल करण जो इंकशाफ़ निगरी जो लाश जवाबदार गिरफ़्तार ॾोह जो एतिराफ़ पुलिस पहुचे

जी दुआन सारी जो पुराने तफलीकी मरकज वटा लाश मिलो हो बाकी शकियों जड़ से पोस्टमार्टम करायो तो बाड़ी सा जाती की तस्दीक थी। जवाबदार कासिम कंडाणी के गिरफ्तार किया है जै दो जो इतराफ किया है। वकीलन जो नीगरी के कतल वाले वाक्य खिलाफ एहतजाज तालुका अस्पताल के भी सहूलतों देने का मुतालबो। सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद से मुख्तलिफ इलाक में आयल शहरियन अवामी नुमाइंदन की मुलाकातू। शर्जील इनाम अहमद सिंध हुकूमत अवाम के रिलीफ दियण लाय अमली कदम से यकीन रखे थी। मसलन के हल लाय इदारन के मुतारिक किया है। सिंध में सेहत के निजाम में बेहतरी आंदी है। ट्रांसपोर्ट जो शोबो भी बेहतर थो है।

जे दरपेश आईनी मुआशी ऐं आबी चैलेंजेस बाबति सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम जो कराची में सेमिनार। सूबे जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। ज़ैन शाह ख़िताब कंदे चयो त हुकमरान सिंध खे टुकड़ा करे वसीलनि ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। केसर बंगाली चयो त सिंध खे इस्लामाबाद सां थींदड़ मुआहिदनि ते अखियूं खोलणु घुर्जनि। आमिर नवाज़ फड़ाए चयो त सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम ऐं वकील मुतहिद आहे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो त पीसीबी चेयरमैन मुल्क के क्रिकेट वांगुर समझी रो है। सूबन के विरण जड़ा गैर संजीदा ए नवा तजुर्बा कर बदला मसलन जो हल गोलो वने। अब्दुल हसीब जमाली सिंध पाकिस्तान के क्याम लाए किरदार अदा कयो जो कदम करण घुर्जे। वहाब शर कौमी असेंबली के भी सूबन के विरागे जो अख्तियार ना साजिशन जो खात्मो आंदो वने।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी। हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

SMS कर सकते हैं। आपने कोई शायरी, कोई पोएट्री, कुछ भी ऐसा शेयर करना या अपनी कोई कहानी, क्योंकि शाम का टाइम है और अक्सर शाम में उदास होती है और ये दिन भी कुछ उदास उदास वाले ही चल रहे हैं अब आजकल देखा जाए तो, क्योंकि सर्दियों की आमद आमद शुरू होने वाली, गर्मियों का अब मौसम जाने वाला है, तो ये उदास शामें होती हैं। कुछ लोगों के लिए उदास हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए खुशगवार, लेकिन उदास इसलिए जरूरी नहीं कि कोई एक ना खुशगवार वाक्य हो, मेरी को उदास कर अच्छी यादें भी हमें समटाइम उदास कर जाती हैं। तो जी बिल्कुल, आज की शाम भी हम ऐसे ही कुछ नाम करने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी बात कहूंगी उसके बाद चले चीजें कि आज की शाम हम करते हैं कुछ यादों के नाम, ठीक है ना। हम हर शाम कोई ना कोई किसी न किसी के नाम करेंगे, तो आज हमने कुछ यादों के नाम कर दी, वो यादें जो वो पाते जो हमारी जिंदगी की आज यादें बन चुकी हैं। कल वो हमारा गुजरा हुआ कल थी, एक टाइम वो हमारा प्रेजेंट थी, पहले फ्यूचर थी फिर प्रेजेंट थी, अब वो हमारा माजी बन चुकी है और वो हमें यादों में रह गई हैं। तो ये बिल्कुल जिंदगी में कुछ शामें ऐसी होती हैं ना जो हम कभी नहीं भूल पाते,

कुछ शाम है बिल्कुल, मतलब कि वो ऐसी यादें ना उसे कुछ याद करने की खास वजह होती है ना कोई बड़ी वजह, लेकिन फिर भी हमें याद होती है क्योंकि वो खुशगवार लम्हे होते हैं। तो हर वक्त हमें सिर्फ एक ना खुशगवार वाक्य लम्हों को याद नहीं करना चाहिए, अच्छे लम्हे भी जिंदगी में गुजरते हैं उन्हें भी याद रखना चाहिए। बस वो शामें दिल में उतर जाती हैं, कभी किसी अपने का फोन आ जाना और आज ये सोचना कि अब वो फोन नहीं आता, वहां उस नंबर से मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं आता। हम शाम के इस पैर बैठकर उनसे बातें करते थे, कभी वो हमारे सामने बैठे होते थे, कभी आज वो हमारे लिए याद बन चुके हैं। वो कोई भी शख्सियत हो सकती है, कोई इंसान हमारी जिंदगी में खास, हमारा दोस्त, हमारा अपना रिश्ता, कोई करीबी। शायद आज वो किसी दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे उनके गुजारे हुए लम्हे हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि इंसान कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हम उनसे नहीं मिल पाते, कोई रब्ता कुछ नहीं होता, तो बस एक अच्छे लम्हे उनके साथ गुजरे हुए याद हो जाते हैं, हमें वो याद रखने चाहिए। और वो शामें हमें याद दिलाती हैं कि इनके साथ गुजरे हुए लम्हे ऐसे थे जो कभी हम भूल ही नहीं सकते। बहुत सी ऐसी शामें होती हैं आपने किसी फ्रेंड के साथ गुजारेंगी, कहीं कैफे में, कहीं रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस में हंसी मजाक करते हुए चलते हुए कि लम्हे में आपको वो चीजें वो वक्त रहते, सम टाइम एक कप चाय आपको किसी की याद दिला जाती है। तो जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेंगे, बहुत सी बातें करते रहेंगे हम प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा ट्रैक अपने तमाम सुनने वाले लिसनर्स के नाम करना है। तो जी बिल्कुल, मैं एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आप सब मेरे साथ सुनिए, नवीन शक्कत की खूबसूरत की आवाज में जिंदगी ए जिंदगी। जी बिल्कुल, मैं प्ले कर चुकी हूँ, आप लोग भी इसको एंजॉय करें मेरे साथ।

0: 5:30 PM This soundtrack is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज अपनाए आज ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैंस
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

जल्दी जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए और अवेलेबल कराने के बाद परचेज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए। ओके जी, तो और यहाँ पर आके मैसेजेस हैं, आके फीडबैक्स हैं, तो बिल्कुल आके सादी बातें होंगी, वरना

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

हम अपनी वही बात आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और साथ साथ वहाँ कमेंट्स भी आ चुके हैं हमारे लिसनर्स जो टाइम निकाल कर आते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बिल्कुल डूबते सूरज को देखना दरिया के किनारे बैठकर या समंदर के किनारे बैठकर वो खामोश शामें जहां लहरों की आवाजों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता।

0: मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: Discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. This is one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
4: ओसीएन फोन ते ॿुधायो आहे त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि, ग्राहकनि खे बि घुसण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीक थी वेंदो। सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे, अपना हर मुस्ते कंट्रोल अमरीका जो आहे। अमरीका जारियत बंद करे त अपना हुरमुस खुली वेंदो। अपना हुरमुस बाबति सूमर ते उमान सां माहिदनि ते सहियूं थी वेंदियूं। ईरानी सदर मसूद पिस्टिकियान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि ऐं अमरीका खे पाबंदियुनि ऐं नाकाबंदी ख़त्म करणु घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो त अपना हुरमुस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त मुतालबनि जी महिता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसैन बाबुल मुंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबुल मुंदब जी अहम भेट मेवन ते कब्ज़े जी दावा। यमनी फौज चयो आहे त मखा ऐं बाबुल मुंदब में हुसैन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत। हमला ख़ते जे अमन ऐं इस्तेकाम लाइ ख़तरो करार पढ़े तर्जुमान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि। हमलनि सां ख़ते जो अमन ऐं इस्तेकाम मुतासिर थी सघे थो। मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे। नवनि सूबनि जे हवाले सां आवाम खां बि राय वरिती वेंदी। पीपल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रदे अमल ॾिनो। सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त वफ़ाक़ी घर वज़ीर सूबनि वारे मामले ते काबीना तोड़ी पार्लियामेंट में नाहे ॻाल्हायो। वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी नाहे।

0: वापार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मां गाडी वारे दे वियम मां उने के चबा डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल महंगो थी आ 3000 रुपया किराए वठन मैं खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: आनू जे जी जंजाल थी आ गाडी कढन जेड़ा कोन मां परेशान लगा
2: महंगाई जो भूत आोतल में निकली आयो गरीब मांग के
3: भुखते मरण था 500 कमायूं था 500 पूरा ही ना है हुकूमत वोट दई अस गरीब फांसी आयूं
4: असर
5: पहुंची रोजगार
6: चाल चढ़े थी 20 रुपया 140
7: पेट्रोल जे कन में घाटे तोड़ बाद शहरी खत्म कर छी मुसाफिर गाड़ियों के भाड़न में घाटे तोड़ बाद खाद खुराक वाली शयूं भी महंगी थी वयूं खाद खुराक वाली शयूं जा अघ भी वधी विया शहरी सख्त परेशान सक्कर में शहरी तार जो इत्तेजाज अलामती जलासो भी कढ़ी वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ।

ये परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। आवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

तो जी बिल्कुल आवाज के रिश्ते में एक बार अपने तमाम सुनने वाले लिसनर्स को मेरी तरफ से वेलकम। तो जी बिल्कुल जहां आवाज वहां रिश्ता, दिल से दिल तक का। तो आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के अल्फाज को यहाँ आवाज दी जा रही है। आप लोग अपने ख्यालात अपने साथ साथ अल्फाज की शक्ल में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और वो मैं आप लोगों की अल्फाज, आप लोगों के अल्फाज आपकी आवाज बनकर यहाँ पे शामिल करूंगी। तो जी जनाब, हम लोग बात कर रहे थे शाम के हवाले से, किस्सों कहानियों के हवाले से बातें होती रहेंगी। तो जी प्रोग्राम में भी एक अच्छा सा एक कोर ट्रैक जो है मैं प्ले करने जा रही हूँ। भाई मैं सेट सॉन्ग नहीं कर रही इतने प्ले, वरना सब बोलेंगे कॉमन तो सेट सॉन्ग ही प्ले करती है, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश होती है और कुछ अपने अपने मिजाज के हिसाब से, तो मुझे स्लो म्यूजिक थोड़े से अच्छे लगते हैं, सैड भी अच्छे लगते हैं। तो जी बिल्कुल मैं एक अच्छा सा ट्रैक प्ले कर चुकी हूँ अपने तमाम लिसनर्स के लिए। नाजिया हसन की खूबसूरत सी आवाज में, जी बिल्कुल ये खूबसूरत सी सिंगर थे, इनकी इतनी आवाज सुरीली थी, सजादू आज भी लोगों के समाप्त टकराता है, उनके चाहने वाले उनके मदाओं के दिल में आज भी जिंदा है, जिसे इनकी आवाज आज मैं सुनती हूँ, बड़े शौक से इनके सॉन्ग पसंद है, दिल की लगी कुछ और भी। तो आई होप मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे आवाज के रिश्ते में ये खूबसूरत सी आवाज नाजिया हसन की, जो मैं शामिल कर चुकी हूँ।

अच्छा जी, इन्होंने एक शायरी भी, अच्छा इन्होंने एक शायरी कह सकते हैं बकौल उनकी जबान में, तो अब्दुल रजाक साहब जो हैं अपने किसी चाहने वाले किसी दोस्त के नाम कर रहे हैं। तो जी इन्होंने लिखा है कि पैसा कमाने में वक्त लगता है, मगर उसे खोने में कभी कभी गलत फैसला काफी जरूरी होता है, या उसे पकड़ लेना चाहिए कभी। शायद इनकी टाइपिंग गलत हो चुकी है, गई है। बहरहाल जो भी आपका मैसेज हमने मोहम्मद अली तक पहुंचा दिया है, कन्हार आपके जो भी चाहने वाले हैं, आपके अजीज जो हैं, उन तक हमने आपके अल्फाज जो हैं वो पहुंचा दिए हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया था गुलाम हैदर बुलभुट्टो ने, और ये कासिम गोड मीरपुर, अच्छा खैरपुर मीरत सिंध से हैं। अच्छा जी सखर वाला, ये तो हमारे पड़ोसी हैं। हाँ जी, तो जी बिल्कुल, आप तो हमारे पड़ोसी हैं खैरपुर मीरत से। तो जी आप सबको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम आवाज के रिश्ता में। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और एक अच्छा सा ट्रैक, एक अच्छा सा सॉन्ग जो है बलोची बुट्टी ब्रदर, वो मैं प्ले कर रही हूँ आप सबके लिए। समझ तो गए होंगे कौन सा प्ले किया है मैंने। जी बिल्कुल, एनाज हुस्ने वाला। मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। इसका म्यूजिक बड़ा कल्चर, एक म्यूजिक है सकाफती म्यूजिक, इसमें इस्तेमाल किया है। ये धुन जो है बड़ी अच्छी लगती है इसकी। चलें जी जनाब, मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करें ए नाज हुस्ने वाला। आवाज के रिश्ते में एक और खूबसूरत सी आवाज बुट्टी ब्रदर्स की हमने शामिल कर दी।

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो.
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
4: जीए FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराने जो इशारो ॾेई छॾियो वजीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त नवनि सूबनि जे हवाले सां फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी गॾियल पार्लियामेंट मंज़ूरी ॾिनी त उन खां पोइ रेफरेंडम थींदो हुकूमत अकेले सिर इहो फ़ैसिलो नथी करे सघे मुस्लिम लीग नून समेत सभई पार्टियूं पार्लियामेंट जे फ़ैसिले खे तस्लीम कंदियूं इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त इकनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबनि वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो अवाम नवां सूबा चाहे थो त केर बि रोके नथो सघे पीपल्स पार्टी मामले ते ज़रूरत खां वधीक रद अमल ॾिनो आहे एमक्यूएम सिंध जे विरहाङे जो रिंगट बंदि न कयो एमक्यूएम पाकिस्तान जे चेयरमैन ख़ालिद मकबूर सिद्दीकी चयो आहे त सूबे जे विरहाङे खे गदारी करार ॾींदड़ सभ खां वॾी गदारी आहे असांजा वॾा लॾपॾाण करे क़ाइदे आज़म जे पाकिस्तान में आया हुआ ख़बर नाहे कंहिं उन्हनि खे भुटो जे पाकिस्तान में धिके छॾियो अॼु कराचीअ जी आबादी 2 करोड़ खां वधीक आहे समूरे मुल्क में आबादीअ जे हिसाब सां सूबा ठहणु घुर्जनि वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो चवणो हो त मौजूदा निज़ाम में मुल्क नथो हली सघे हू कंहिं बि फोरम ते कंहिं बि वक़्तु सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे अवाम खे अख़्तियार ॾियणो पवंदो त जंहिंखे पसंदि न करे उन खे हटाए सघे

0: सिंध के दरपेश आइनी मुआशी ऐं आबी चैलेंजेस बाबति सिंध यूनाइटेड लायर्स फोर्म जो कराचीअ में सेमिनार। सूबे जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। सैयद ज़ैन शाह ख़िताब कंदे चयो त हुकुमरान सिंध खे टुकड़ा करे वसीलनि ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। कैसर बंगाली चयो त सिंध खे इस्लामाबाद सां थींदड़ मुआहिदनि ते अखियूं खोलणु घुर्जनि। आमिर नवाज़ वड़ाए चयो त सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम ऐं वकील मुतहिद आहिनि। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो त पीसीबी चेयरमैन मुल्क खे क्रिकेट वांगुर समझी रहियो आहे। सूबनि खे विरहाइण जहिड़ा गैर संजीदा ऐं नवां तजुर्बा करण बदिरां मसइलनि जो हल ॻोल्हियो वञे। अब्दुल हसीब जमाली चयो त सिंध पाकिस्तान जी क़याम लाइ किरदार अदा कयो, जंहिंजो क़दुरु करणु घुर्जे। वहाब शर चयो त क़ौमी असेंबलीअ खे बि सूबनि जे विरहाङे जो अख़्तियार नाहे, साज़िशनि जो ख़ात्मो आंदो वञे। सिंध जे मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते ग़ौर वीचार लाइ सिंध असेंबलीअ जी 12 रुकनी ख़ासि कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। एमक्यूएम जमात इस्लामी ऐं पीटीआई तरमीमी बिल खे रद्द करे छॾियो। कमेटी सरबराह ज़ियाउल हसन लज्जार चयो त मकानी निज़ाम बाबति एमक्यूएम जो बिल नाहे आयो, असेंबली जी इजाज़त सां ई उन ते ग़ौर कयो वेंदो आहे। नओं चूंड शेड्यूल जारी थींदे ई इंतज़ाम हवाले थी वेंदा आहिनि। एडमिनिस्ट्रेटर रुगो रोज़ाने जे मामला ॾिसी सघंदो। एमक्यूएम जे तहा अहमद चयो त दांदली ऐं जाली मेयर खे मज़बूत करण लाइ कानून साज़ी कई पई वञे। जमात इस्लामी जे मोहम्मद फारूक चयो त हू सियासी एडमिनिस्ट्रेटर सां इतफ़ाक़ नथा कनि, अहिड़ी तरमीम आई त अदालत जो दरवाज़ो खड़कायो वेंदो। पीटीआई जे शबीर कुरेशी चयो त अणचूंडियल नुमाइंदनि खे यूसीए में विहारणु मुनासिब नाहे, अणधुरिया एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कया वञनि।
1: We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called, and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
0: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रणु ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन ते हमलनि जो ज़िमेवार बि ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीक थी वेंदो। सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे, आबनाए हुरमस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे। अमरीका जारियत बंदि करे त आबनाए हुरमस खुली वेंदो। आबनाए हुरमस बाबति सूमर ते ओमान सां माहिदे ते सयूं थी वेंदियूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि, अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़त्म करणु घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो त आबनाए हुरमस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे, तेल क़ीमत में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो त मुतालबनि जी मंझता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसी बाबुल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबुल मदब जी अहम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा। यमनी फ़ौज चयो आहे त मखा ऐं बाबुल मदब में हुसैन जी थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत, हमला ख़िते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़तरो करार। परडेही तर्जुमान जो चवणु आहे त सऊदी अरब जी तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबब शहरी बे ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि, हमलनि सां ख़िते जो अमुन ऐं इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो।

0: इंतज़ार कंदव रात मुझे घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदव मा गाड़ी वाले दे वियम मा उने के जवा डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल महंगो थी आ 3000 रुपया किराए वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: कानून जे जीण जंजाल थी आ गाड़ी कढण जेड़ा कोन मा परेशान लगा पया
2: आवाम से लुटी थी आ भाई मा परेशान खुद कशन दे मजबूर है
3: महंगाई जो जो भूत आ बोतल मां निकली आयो गरीब माऊ के दा
2: पचा सडा भूख ते मरण ता 500 कमायो ता 500 पूरा ही ना है ते हुकम ता सोट दे अस गरीब फांसी आ आयो
4: थी रेवर आयो मथान ते वडा असर पोदी आ न सा जो रोजगार बंद थियो आ
5: अचर बुरो आ जायो पावे दा ओटो अचर आ जुलमा जडी रोयो ता मा लाय बात ते ता दो मा लाय के लो
6: दाल चढ़े थी सब्जी दिसो चढ़े थी के चढ़े तो अटो दे तो 20 रुपया
7: पेट्रोल जे अघन में गाटे टोड़ वाद शहरन जी सहप खत्म करे छदी मुसाफिर गाडन जे भाड़न में पे गाटे टोड़ वाद बाद खाद खुराक वारी शयूं पे महांगी थी वयूं खाद खुराक वारन शयन जे अघ पे वधी वया शहरी सख्त परेशान सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाज़ो पे कढियो वयो पेट्रोल महांगो थियण सबब अटो 30% खीर 8% मिर्च 16% बसर 125% गोश्त 15% डबल रोटी 8% महांगो थी वही शुमारियात खाते महंगाई वधण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त बिजली 25% एलपीजी 55% महांगी थी आहे पटाटा मुर्गी बेजा ऐं खंड सस्ती थी आहे
8: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
9: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
10: खुशखबरी हाने अवागे परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे जे करे तवहा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह हेल्थ कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 का शाम 5 ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: बाबल मंदिर जी अहम पेट मेवन ते भी कब्जे की दावा यमनी फौज वाहिद मखा ए बाबल मंदिर में होसियन के थाकन ते बमबारी कई है जै दौरान होसियन जो वो नुकसान थो है।

0: वफाकी हुकूमत नवन सूबन वारे मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराने जो इशारो डेई छो वजीर आजम के सियासी मामलन वारे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त नवन सूबन के हवाले से फैसलो पार्लियामेंट कंदे कड़ियल पार्लियामेंट मंजूरी डिनी तो उनका कोई रेफरेंडम थींदो हुकूमत अकेले सिर इहो फैसलो नथी करे सघे। मुस्लिम लीग नून समेत सभी पार्टियों पार्लियामेंट के फैसलों के तस्लीम कदियों। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे राणा सनावला चयो त इकोनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबन वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो। अवाम नवा सूबा चाहे तो केर भी रोके न तो सके। पीपल्स पार्टी सूबन वारे मामले ते जरूरत का वधिक रद्द अमल डिनो आहे। एमक्यूएम सिंध के विरागे जो रिंगट बंद कयो। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो आहे त सूबे के विरागे के गद्दारी करार डींदड़ सब का वडी गद्दारी आहे। असाजा वडा लड प्लान करे कायदे आजम जे पाकिस्तान में आया हुआ। खबर ना के इनन के भुट्टो जे पाकिस्तान में धिके छो। अज कराची की आबादी 2 करोड़ का वधिक है। समूरे मुल्क में आबादी के हिसाब से सूबा ठहण घुर्जन। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो आहे त मौजूदा निजाम में मुल्क न थो हले सघे। वो कें भी फोरम ते कें भी वक्त सूबन के हवाले से गलण लाय तैयार है। आवाम के अख्तियार देणो पवंदो तो जैके पसंद न करे उनके हटाए सके।
1: ये जो कायदात का जो ड्रामा आया ये 4 महीनों से चल रहा है। आपने देखा होगा बजट इजलास में भी ये ड्रामा हुआ। तब से लेकर कहा गया है कि भाई इसको तोड़ेंगे जिनके लिए मौके वतन है ये तो कोई जरूरत नहीं कर सकेगा। लेकिन ये जो खाया है जो कब्जा किया है कि ये जो आपने सौदे किए ये वापस करें ये आपके इस रेजुलेशन में तुम न करें कि जो आपने वेस्ट किया है जमीने वापस करें और हमारा लैंड वापस करें।
2: अगर सिंध की वदानियत के ऊपर आप बात करेंगे तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान की वदानियत को थ्रेट करेंगे।
0: सिंध के दरपेश आइनी मुआशी आबी चैलेंजेस बाबत सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम जो कराची में सेमिनार। सूबे जिमकानी विरागे खिलाफ ठहराव मंजूर। जैन शाह खिताब कंदे हुकमरान सिंध के टुकड़ा करे बसीलन ते कब्जो करण चाहन था। केसर बंगाली चयो सिंध के इस्लामाबाद से थींदड़ माहिरन ते अखियूं खोलण घुर्जन। आमिर नवाज वड़ाए चयो त सिंध के विरागे खिलाफ सिंध जो अवाम ए वकील मुतहिद आहिनि। बैरिस्टर सलाउद्दीन चयो त पीसीबी चेयरमैन मुल्क के क्रिकेट वांगुर समझी रही है। सूबन के विरण जड़ा गैर संजीदा नवा तजुर्बा करण बदरा मसलन जो हल गोल्यो वे। अब्दुल हसीब जमाली चयो त सिंध पाकिस्तान के कयाम लाए किरदार अदा कयो जो कदर करण घुर्जे। बाबशर चयो त कौमी असेंबली के भी सूबन जिबरागे जो अख्तियार ना साजिशन जो खात्मो आंदो वे।

0: कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाडी वाला दे विम मा उने के जब डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल महंगो थिया 3000 रुपया किराए वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा सा ना कई हशर
1: आऊं जे जी जंजाल थिया गाडी कढन जेड़ा कोन मा परेशान लगा
2: عوامی سے لوگ بھی آئے بھائی ماحول پریشان خود کشن سے مجبور ہیں
3: مہنگائی جو جو بھوت ہے بوتل میں نکلی آیا غریب ماؤں کے
4: بھکتے مرن تھا 500 کمایوں تھا 500 پورا ہی نہ ہے کہ حکومت سے ووٹ دے اصل غریب پھانسی آئیں
5: رہوار آئیں
6: روزگار
7: पेट्रोल के अघन में घाटे टोड़ बाद शहरियों की सब खत्म कर छी मुसाफिर गाड़ियों के भाड़न में घाटे टोड़ बाद खाद खुराक वारी शयू भी महंगियों थी वयू खाद खुराक वारी शयू जा अघ भी वधी विया शहरी सख्त परेशान सक्कर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाजो भी कटो वो पेट्रोल महंगो थे सब पटो 30% खीर 8% मिर्च 16% बसर 125% गोश्त 15% ए डबल रोटी 8% महंगो थी वही शुमारियात खाते महंगाई बढ़ने की तस्दीक कदे है त बिजली 25% एलपी पटाटा खंड सस्ती थी है इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत के खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी समेत चैन जवाबदार की गिरफ्तार कर पेश करने जो हुक्म दई छो रमना थाने ते दाखिल केस में नामजद सुहेल आफरीदी सूबाई काबीना मेंबर मीना खान आफरीदी एमएनए शाहिद खटक ए शफी जान जा नवा गिरफ्तारी वारंट जारी

0: आमर ज़ियाउल हक़ जे दौर में जमहूरियत जी बहाली वारी तहरीक दौरान शहादत माणींदड़नि जी 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। ख़ैरपुर नातन शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी, नओं देरो में शहीदनि लाइ क़ुरानख़ानी कई वई। केएम शाह में पीपल्स पार्टी जे जलसे जूं बि तयारियूं मुकमल। हाई कोर्ट सखर बेंच जे हुकुम ते आईजी सिंध जी फहमीदा प्रतापी केस जी जांच लाइ घोटकी आमद। जावेद आलम मोडो एसएसपी ऑफिस में डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठाण एसएसपी सां गॾजाणी करे ब्रीफिंग वरिती। आईजी सिंध जो दौरो मीडिया खां गुझो रखियो वियो। ज़रियनि मूजिब आईजी फहमीदा केस बाबति तफ़सील बि वरिता। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंहिंजे ई शहर लाहौर में अस्पताल में दस्ताना ऐं सिंध जूं नौजवान जो इंकशाफ़। ॿियो अस्पताल जी सर्जिकल आर्थोपेडिक समेत मुख़्तलिफ़ वार्डन में दस्ताना न हुजण जूं शिकायतूं। एमरजेंसी में आयल हेड इंजरी जे मरीज खे दस्ताना न हुअण करे टाका न लॻी सघिया। दस्ताना न हुअण सबब ओटी टेक्नीशियन टाका लॻाइण खां इनकार करे छॾियो। मरीज ऐं वारिसनि जो वीडियो बयान जारी। ॿियो अस्पताल नॉर्थ सर्जिकल वार्ड में 10 सीसी सिरन जूं दस्तयाब न हुअण जो बि इंकशाफ़।
1: नमाज पढ़ने गया, पीछे से बच्ची गुम हो गई। जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं, तो अकेला तो पीछे नहीं लिए। कौन क्या करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा। कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला, ना बगैर दाढ़ी वाला, ना मूंछों वाला वडेरा, कोई भी साथ नहीं देगा। जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें, बगैर दाढ़ी वाले भी करें। मेरे पहचान करो, धक्का दो मेरे को। इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
2: इंसाफ खपे असांखे, जो मुजरिमान खे सज़ा मिले। ऐं अॼु असांजो त थी वियो, कई ॿियनि सां बि थी मिले।
0: चंड आदम मां घुसियल ॾींहुं गुम थियल बाड़ी खे जिनसी ॾाढाई बाद क़तल करण जो इंकशाफ़। निगरी जो लाश आहे त जवाबदार गिरफ़्तार, रोज़ जो एतिराफ़। पुलिस मौज

अंजुम मिलवासी पंज वरियन जी दुआ अंसारी जो पुराणी तब्दीली मर्कज वटां लाश मिलियो हो वाकई शक्की हुजण ते पोस्टमार्टम करायो त बाड़ी सां जाति जी तस्दीक थी जवाबदार कासिम कंडाणी खे गिरफ्तार कयो आहे जंहिं डोह जो एतराफ़ कयो आहे। अकीलन जो निगरी जे कतल वारे वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाज तालुका अस्पताल खे बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो। घोटकी में घोटाणे ते तशद्दुद वारे केस में अॻूणे एसएचओ काबिल भइयो ॿिनि ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले। अदालत पारां काबिल भइयो ऐं अहलकार निसार मेहर जो रिमांड मंज़ूर कयो। अहलकार निसार बहर खे बि पुलिस हथकड़ियूं हणी रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो। बदे जी भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो क़तल, निंगरी समेत ॿ ज़ख़्मी। ओट फकीरपुर बिरोई में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग, सादिक बिरोई मारिजी वियो। फायरिंग में पीउ मासूम थी समेत ज़ख़्मी, घटी जोगी हालत में लाड़कान अस्पताल मुंतकिल। ज़ख़्मियुनि में एजाज़ बिरोई ऐं संदसि मासूम नियाणी बिस्मा बिरोई शामिल।

0: इंग्लैंड जी टीम टिन मैचेस से वधल टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के व्हाइट वॉश कर छो। बिर्मिंघम टेस्ट के चौथे डी इंग्लैंड हथा पाकिस्तान के 8 विकेटन का शिकस्त। पाकिस्तान जो 130 रन्स वो हदफ इंग्लिश टीम 2 विकेटन के नुकसान से हासिल करे वरतो। मोहम्मद अब्बास पहरे ओवर में इंग्लिश टीम के बिन्हीं ओपनर्स बेन डक्ट एमिलियो गे के आउट कयो। कप्तान जो रूट जॉर्डन कॉक्स जिम्मेवारी बैटिंग कदे बिना कें वधिक नुकसान जे टीम के कम में बिहारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

जवां मेरी जाने जहां है ये जिंदगी हसी जिंदगी का है निशान मेरी जान ऐ जाने जा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जीए FM 88 नेटवर्क ते।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर
1: खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: जब मामला ॾिसी सघंदो MQM जे तहा अहमद चयो त दांदली ऐं जाली मेयर खे मज़बूत करण लाइ कानून साज़ी कई पई वञे। जमात इस्लामी जे मोहम्मद फारूक चयो त हू सियासी एडमिनिस्ट्रेटर सां इतफ़ाक नथा कनि। अहिड़ी तरमीम आई त अदालत जो दरवाज़ो खिड़कायो वेंदो। PTI जे शबीर कुरेशी चयो त अण चूंडियल नुमाइंदनि खे UCA में विहारण मुनासिब नाहे, अण धुरिया एडमिनिस्ट्रेटर मुक़रर कया वञनि।
4: We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called, and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And I mean, most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
5: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। मां बि सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन्स ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे, अपना हरमुस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे।

0: अमेरिका जारियत बंद करे तो आबनाए हुर्मुज खुली वो आबनाए हुर्मुज बाबत सूमर ते ओमान सा माहिदे हमला थिया अमेरिका के पाबंदियों आबनाए हुर्मुज ईरान वट आए तेल कीमत में वाध जो जिम्मेवार भी अमेरिका आए सऊदी अरब उर्दन जापान के ईरान खिलाफ ठहराव की हिमायत करण से नतीजा भोगना पौंदा सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीज जी चयो तो मुतालबन की महिता ताई अमेरिका से गाल नथी थियो
1: यमन के हुसैन बाबुल मुंतब जो कंट्रोल सवारण बाद आलमी आफी रस्ते में गश्त शुरू कर छो बाबुल मुंतब के अहम बेट मेवन ते भी कब्जे की दावा यमनी फौज है मका बाबुल मुंतब में हुसैन के ताकत से बमबारी कई है जै दौरान हुसैन को वो नुकसान थो है।

0: सुधार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाडी वाला दे विम मा उने के जवर डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल मांगो थी 3000 रुपया किराए वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: आनू जो जी जंजाल थी आ परेशान लगा था
2: आवामी के लुटी थी आ भाई मा परेशान खुद कशन दे मजबूर है
3: महंगाई जो जो भूत आ बोतल में निकली आयो गरीब माओ के दा
4: पचा सोंडा भुखते मरण ता 500 कमायो ता 500 पूरा ही ना है के हुकुम ता सोट दे अस गरीब फांसी आयो
5: थी रेवर आयो असन ते वडा असर पोजी आ ना सा रोजगार बंद पियो आ
6: असर बुरो आ जायो पाव दा ओतो असर आ जोडी रोयो ता मा ला जवा ता दे मा ला के
7: दाल चढ़े दी ती के चढ़े 20 रुपया 40 का दियो फिर गरीब माओ कालो असना
8: पेट्रोल जगन में घाटे तोड़ वाद शहरियन की सह खत्म कर छी मुसाफिर गाड़ियों के भाड़ में घाटे तोड़ वाद बाद खाद खुराक वाली शयू भी महंगी थी वही खाद खुराक वाली शग भी वी वह शहरी सब परेशान सक्कर में शहरी ताब जो एतजाज सलामती जहाज भी कटे वो
9: पेट्रोल महांगो थे सबब अटो 30 सैकड़ो खीर 8 सैकड़ो मिर्च 16 सैकड़ो बसर 125 सैकड़ो गोश्त 15 सैकड़ो डबल रोटी 8 सैकड़ो महांगो थी वही शुमारियात खाते महंगाई वधण की तस्दीक कंदे चयो आहे तो बिजली 25 सैकड़ो एलपीजी 55 सैकड़ो महांगी थी आए पटाटा मुर्गी बेजा खंड सस्ती थी आए
8: इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत केपी के वे वजीर से लाफी समेत चैन जवाबदार की गिरफ्तार कर पेश करने का हुक्म दई छो रमना थाने के दाखिल केस में नामजद छयल आफरीदी सूबाई काबीना मेंबर मीना खान आफरीदी एमएनए शाहिद कटक शफी जान जा नवा गिरफ्तारी वारंट जारी
9: कराची के इलाके सफूरा चौरंगी वट प्रोफेसर ते तशद्दुद वारो वाक्यो किंज पेश आयो असुल डोह कंजो हो बिनी धुरन जी केटीएन न्यूज सा तफसीली गाल बोल मुतासर प्रोफेसर आरिफ साकी चयो आहे त सफूरा चौरंगी वट एक डाले रिवर्स में गाड़ी के टक्कर हयो डाले वाले के नुकसान भरे देण जो चयो त नौजवान कोनेन वहशियाना तशद्दुद कयो एक फर्द जे अमल पूरे खानदान के बदनाम कयो आहे डाला कल्चर खत्म थण घुर्जे अगूणे वफाकी वजीर अली गोहर शाह चयो आहे त दुनिया में कानून आहे किथे बि पोयां जेको गाॾी हणे कसूर उन जो हूंदो आहे जहिड़ा थींदा आहिनि क़तल बि थी वेंदा आहिनि पर आइन ऐं शरीयत मूजिब दिफ़ा जो हक़ बि आहे जिते जहिड़ो थियो उते अॻु में बि जहिड़ा थिया आहिनि जहिड़नि में खानदान जा माण्हू मुलविस आहिनि उन्हनि जूं नज़रूं मुंहिंजे प्लाट में आहिनि असांजो मौलवीअ सां छा थी वियो हो राशिद शाह वञी उन खे भड़कायो

0: आमर ज़ियाल हक़ जे दौर में जमहूरियत जी पहली वारी तहरीक दौरान शहादत मणिकरण जी 43 वर्षी मल्हाई 12 सितंबर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी नओं दौरो में शहीद लाइ पानी कई वई कैन शाह में पीपल्स पार्टी जे जलसे में माण्हुनि जी वॾे अंग शिरकत कई
1: हाईकोर्ट सखर बे जी हुकुम ते आई जी सिंध जी
2: आप सुन जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीए एफएम 91.6
4: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारीअ में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध

होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।